फिर अगर ये लोग तुमको झुटला रहे हैं तो तुमसे पहले बहुत से पैगंबर खुली हुई निशानियां और सहीफे और रोशन किताबें लेकर आ चुके हैं कि उनको भी झुटलाया गया था। हर शख्स को मौत का मजा चखना है और तुमको कयामत के दिन तुम्हारे आमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। तो जो शख्स दोजख से दूर रखा गया और बहिश्त में दाखिल किया गया वो मुराद को पहुंच गया। और दुनिया की जिंदगी तो धोखे का सामान है। ए अहले ईमान, तुम्हारे मालो जान में तुम्हारी आजमाइश जरूर की जाएगी और तुम अहले किताब से और उन लोगों से जो मुशरिक हैं बहुत सी ईजा की बातें सुनोगे, तो अगर सब्र और परहेजगारी करते रहोगे तो ये बड़ी हिम्मत के काम है।

Koyale, aya dado, mandu koyale.

लहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

अमेरिकी हमले बाद ईरान जो जवाबी कार्रवाईयों ओमान कतर अरदान बहरीन ने कोते हमला ईरान पारा अमेरिकी फौजी अडन दिफाई निज़ाम के तबाह करण जी दावा ईरान पारा अपने हरमुज ते बंद करण जो ऐलान ईरान पारा अपने हरमुज जो कंट्रोल हासिल करण जी भी दावा।

पाकिस्तान पारां अमेरिका ऐं ईरान विच में ॿीहर छिकताण वधण ते ॻणितीअ जो इज़हार। ॿिन्ही मुल्कनि खे सबर ऐं बर्दाश्त खां कम वठण जी अपील। परॾेही खाते जे तर्जुबान चयो आहे त समूरियूं धुरियूं छिकताण जे ख़ात्मे लाइ फौरी कदम खणनि। धुरियूं इस्लामाबाद मुफ़ाहमती याददाश्त तहत पंहिंजे वाइदनि जी पासदारी कनि। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त छंछर ॾियारे ईरान अमेरिका हिकु बहितरीन मुआहिदे ते इतफ़ाक़ करे वरितो हो। ईरान एटमी प्रोग्राम समेत समूरनि इख़्तिलाफ़ी मुआमलनि तां हथु खणी वियो हो, पर ॻाल्हियूं ख़तम थियण जे हिकु कलाक अंदरि आबनै हर्मुज़ ने सिफारिश जे बहरी जहाज़ ते ड्रोन हमिलो करे ॾिनो हो। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो ईरानी क़यादत ते बीमार ज़हनियत जो इल्ज़ाम। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो त ईरान जी चिड़ ॾियारींदड़ कार्रवाई बाद अमेरिका भरपूर जवाबी कंदे ईरान ते शदीद बमबारी कई। अमेरिकी हर्मुज़ बंदि नाहे थी, समूरनि जहाज़नि लाइ खुलियल आहे।

गडि॒यल क़ौमनि जे सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस पारां अमेरिका ऐं ईरान खे तकरार ख़तम करण जी अपील. एंटोनियो गुतरेस अमेरिका ऐं ईरान ते ज़ोर भरियो त उहे ताज़ियुन चक्रियुनि खे रोकिन ऐं उन्हनि खे ख़तम करण लाइ ॻाल्हियूं ॿीहर शुरू कनि. ईरान ऐं अमेरिका छिकताण घटाइण ऐं सब्र जो मुज़ाहिरो कनि. नायब वज़ीर आज़म एसाक डार जे ईरानी परॾेही वज़ीर अब्बास इराकची विच सां फोन ते राब्तो. ॿिन्ही अॻवाणनि पारां विच ओभर जी सूरतयाल ते ॻाल्हि ॿोल. एसाक डार चयो त ख़िते में अमुन इस्तकाम लाइ सिफारतकारी वाहिद रस्तो आहे. ॿिन्ही परॾेही वज़ीरनि पारां राब्तनि में रहण ते इतफ़ाक़. बलोचिस्तान जे इलाइक़े माशकेल में भारतीय हामी दहशतगर्दनि जो बुज़दिलाणो हमिलो. पंज पोरेत शहीद सिक्योरिटी ज़रियनि मूजिबि बुज़दिल दहशतगर्दनि मासूम ऐं हथे खाली पोरेतनि खे निशानो बणायो. शहीद पोरेतनि में मोहम्मद बिलाल, मोहम्मद हसन, मोहम्मद कदीर, मोहसिन ऐं बिलाल शामिल आहिनि. दहशतगर्दनि जे बुज़दिलाणे हमिले में शहीद समूरनि पोरेतनि जो वास्तो पंजाब सां आहे. सिक्योरिटी फोर्सिस इलाइक़े खे कड़ो चाढ़े सर्च ऑपरेशन शुरू करे छॾियो. वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़, घरू वज़ीर मोहसिन नकवी ऐं वॾे वज़ीर मुराद अली शाह पारां दहशतगर्दी जी मज़हमत, शहीदनि जे वारसनि सां ताज़ियत जो इज़हार. बलोचिस्तान में ऑपरेशन शहबान जारी. वधीक चार खारिजी दहशतगर्द मारिजी विया. बलोचिस्तान में 5 जुलाई खां जारी ऑपरेशन शहबान ऐं ॿियनि ऑपरेशन में मारिजी वियल दहशतगर्दनि जो अंगु 109 थी वियो. सिक्योरिटी ज़रियनि जो चवणु आहे त सेरान टंगे वारे इलाइक़े में ताज़ियुनि कार्रवायुनि में वधीक चार खारिजी दहशतगर्द मारिजी विया. ऑपरेशन शहबान में जहनम भेड़ो कयल दहशतगर्दनि जो मजमूई अंगु 71 थी वियो. मारिजी वियल दहशतगर्दनि जे कब्ज़े मां वॾे अंग में हथियार ऐं बारूदी मवाद हथु कयो वियो. वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ क़तर जे अॻोणे अमीर जे लाॾाणे ते ताज़ियत लाइ अॼु क़तर वेंदो. वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ क़तरी अमीर शमी शेख तमीम बिन हमद अल सानी सां शेख हमद बिन ख़लीफ़ा जी वफ़ात ते ताज़ियत कंदो. नायब वज़ीर आज़म ऐं 2 अहम शख़्सियतूं बि वज़ीर आज़म सां गॾु हूंदियूं.

ॾिसण में केरु न आयो, असां इहे वारा कयूं पिया, न आयो, न आयो।

बक्शापुर वेझो बीएस गुड्डू फीडर के आरडी 140 वट लगल घारो ब डी गुजरण बावजूद बंद न थी सको। घारे जे पानी सवें गोठ बोड़े छड़ा गोठाणन जो अलह तलह उड़ी वो सवें एकड़ फसल पानी हेठ गोठ मिसरी सैराणी वट पानी रोड मथा ओवरटॉप कर कंदकोट तरफ वधण लगो। गुड्डू बीएस फीडर जा दरिया का गेट बंद करण सबब वेकरा घट थे शुरू थी वया। इंतजामिया जो चवण है घारे जे पानी मां कंदकोट शहर के को खतरो न आए। पानी की सतह घटजन शुरू थी वही है। घारो बधण में कुछ वक्त लगी सके तो। कराची यूनिवर्सिटी में सिंधी शागिर्दन उस्तादन ते हमले केस में पुलिस सियासी दबाव जो शिकार। सिंधी शोबे में हमले केस में नामजद जवाबदारन जी गिरफ्तारी लाए पुलिस कख बनी बीड़ो न कयो। पुलिस गिरफ्तार कैल पंज जवाबदारन जो भी रिमांड न वरतो। जवाबदारन के जेल कस्टडी कयो वयो। फरियादिन जे वकील जो चवण है ते केस में 20 जवाबदार नामजद आइन। हन वक्त ताई पुलिस का भी अग भराई नाहे कई। जांच ऑफिसर फरियादी सां भी राबते में ना आहे। गिरफ्तार कैल सत जवाबदारन मां बिन के एफआईआर में नालो शामिल न होण करे आजाद कयो वयो। कराची यूनिवर्सिटी जे सिंधी शोबे में 35 खां वधीक जवाबदारन हमलो करे उस्तादन शागिर्दन सिंधी शोबे जे मुलाज़िमन के तशद्दुद करे जख्मी कयो हो।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

अमरीकी अमलन बाद ईरान जो जवाबी कार्रवाई ओमान कतर उर्दन बहरीन कुवैत हमला ईरान पारा अमरीकी फौजी अडन दिफाई निज़ाम के तबाह कर दावा ईरान पारा अपने हुरमज बंद करण जो ऐलान ईरान पारा अपने हुरमज को कंट्रोल हासिल कर भी दावा कुवैत पारा ईरानी हमलन में टे सरहदी अडा आयल प्लेटफॉर्म तबाह थे एतराफ़।

0: पाकिस्तान पारां अमेरिका ऐं ईरान विच में ॿीहर चिताण वधण ते ॻणितीअ जो इज़हार। ॿिन्ही मुल्कनि खे सब्र ऐं बर्दाश्त खां कम वठण जी अपील। परॾेही खाते जे तर्जुमान चयो आहे त समूरियूं धुरियूं चिकताण जे ख़ात्मे लाइ फौरी क़दम खणनि। धुरियूं इस्लामाबाद मुफ़ाहिमती याददाश्त तहत पंहिंजे वाइदनि जी पासदारी कनि।
1: अमरीकी सदर ट्रंप चयो आहे छंछरु ॾिहाड़े ईरान ऐं अमरीका हिकु बहितरीन मुआदे ते इतफ़ाक़ करे वरितो हो। ईरान एटमी प्रोग्राम समेत सभिनी इख़्तिलाफ़ी मामलनि तां हथ खणी वियो हो, पर ॻाल्हियूं ख़तम थियण जे हिकु कलाक अंदर अबन हुरमज़ में बहिरी जहाज़ ते ड्रोन हमिलो करे ॾिनो। अमरीकी सदर ट्रंप जो ईरानी क़यादत ते बीमार ज़हनियत जो इल्ज़ाम। अमरीकी सदर चयो त ईरान जी चिड़ ॼाईंदड़ कार्रवाई बाद अमरीका भरपूर जवाबी कंदे कार्रवाई कंदे शदीद बमबारी कई। अबन हुरमज़ बंदि न आहे थी, सभिनी जहाज़नि लाइ खुलियल आहे।

0: गडि॒यल क़ौमुनि जे सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस पारां अमेरिका ऐं ईरान खे तकरार ख़तम करण जी अपील। एंटोनियो गुतेरेस अमेरिका ऐं ईरान ते ज़ोर भरियो त उहे ताज़िन चक्रनि खे रोकिन ऐं उन्हनि खे ख़तम करण लाइ ॻाल्हियूं ॿीहर शुरू कनि।
1: ईरान ऐं अमरीका चिकटाण घटाइण ऐं सब्र जो मुज़ाहिरो कनि। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ईरानी परी वज़ीर अब्बास अराग़ची विच सां फोन राब्तो। ॿिन्ही अॻवाननि पारां विच ओभर ज़रूरतयाल ते ॻाल्हि ॿोल। इसहाक़ डार चयो त ख़िते में अमन इस्तक़ाम लाइ सफ़ारतकारी थी वाहिद रस्तो आहे। ॿिन्ही परी वज़ीरनि पारां राब्तनि में रहण जी इतफ़ाक़।
0: बलूचिस्तान जे इलाइक़े माश्केल में भारतीय हामी दहशतगर्दनि जो बुज़दिलाणो हमिलो। पंज पोरे शहीद सिक्योरिटी ज़रियन मौजूदु बुज़दिल दहशतगर्दनि मासूम ऐं हथे खाली पोरेतनि खे निशानो बणायो। शहीद पोरेतनि में मोहम्मद बिलाल, मोहम्मद हसन, मोहम्मद कदीर, मोहसिन ऐं बिलाल शामिल आहिनि। दहशतगर्दनि जे बुज़दिलाणे हमिले में शहीद समूरन पोरेतनि जो वास्तो पंजाब सां आहे। सिक्योरिटी फोर्सेज़ जे इलाइक़े खे कड़ो चाढ़े सर्च ऑपरेशन शुरू करे छॾियो। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ, घरू वज़ीर मोहसिन नकवी ऐं वॾे वज़ीर मुराद अली शाह पारां दहशतगर्दी जे मज़हमत शहीदनि जे वारसनि सां ताज़ियत

朋友。

ہتھن ماں وے میں دل بھی ہتھن ماں وے میں دل بھی ہتھن ماں

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान जी एफ एम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: क्या आप आसाबी दर्द, जोड़ों की तकलीफ,
1: कमर दर्द या पट्ठों की सूजन से परेशान हैं?
0: अब दर्द को कहें अलविदा
1: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट के साथ।
0: जी हाँ,
1: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश
0: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
1: ये ऑइंटमेंट
0: मुतासरा जगह पर आसानी से जज्ब होकर
1: दर्द, सोजिश
0: और अकड़न से आराम पहुँचाने में मदद देता है।
1: आसाबी दर्द, जोड़ों का दर्द,
0: गर्दन और कमर की तकलीफ,
1: पट्ठों के खिंचाव, मोच,
0: चोट, पुराने जख्मों के दर्द
1: और जल्दी जलन में मुफीद।
0: मुतासरा जगह पर दिन में 2 से 3 मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
1: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट,
0: तेज आराम, मुआसर हिफाजत और काबिले एतमाद मयार।
1: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार। सिर्फ बिंडी हन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डी जोशो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
0: जो शहर बहजो घर सकरंट आई सकरंट जो आवाज
1: GFM 90.8।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

کشتیار کالا تھا.

0: गर्मी का हो या पड़े ठंड,
1: नॉन स्टॉप लॉट्स ऑफ फन।

अगला साल गिरा है उनको कहेंगे मनी मनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे हैव वी विश यू. इसके अलावा वो लोग जो कि बीमार हैं उनको कहेंगे गेट वेल सून. और वो लोग जो कि लाइफ में कुछ अच्छा कुछ बेटर कुछ बड़ा कुछ यूनिक कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं तो विश यू वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक. बहुत सारी बेस्ट विशेज आप लोगों के लिए कि आप अपने हर काम में कामयाब होते रहें. आमीन.

अच्छे हैं सुनने को, सुनाने को, समझने को, समझाने को, सीखने को, सिखाने को, बोलने को, बुलवाने को और वो सारी बातें आप मुझसे करना चाहते हैं, वो सारी बातें हम आपसे करेंगे. लेकिन उससे पहले हम प्रोग्राम में इंक्लूड करेंगे प्रोग्राम में प्रोग्राम का पहला गाना. और प्रोग्राम में प्रोग्राम का पहला गाना हम सुनेंगे द वन एंड ओनली अली जफर की आवाज में. स्टे ट्यून्ड.

जी और प्रोग्राम में आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं तीन तरीके कार से. आप लोग मुझे सिंपली मैसेज कर सकते हैं. सिंपली मैसेज करने के लिए अपना मोबाइल उठाइए, राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, SKR टाइप कीजिए, स्पेस दीजिए, मैसेज टाइप कीजिए, उसको सेंड कीजिए 8881 पे. कमेंट करने के लिए हमारा फेसबुक पेज है, दैट इज www.facebook.com/gfm88 के पेज के ऊपर. आने के बाद आपको मिलेगी पोस्ट जिंदगी गुलजार है कि उसके नीचे आप लोग कमेंट्स को ड्रॉप कर सकते हैं. साथ साथ आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं. कॉल करने के लिए हमारा लाइव कॉलिंग नंबर है 03000113488. इसके ऊपर कॉल कर सकते हैं आप लोग, जो कि आप करेंगे और कर सकते हैं तो जरूर करें और मेरा साथ दें पूरी पूरी एक बजे तक, क्योंकि आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है.

0: कर तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा चेहरा। वाइट एच ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एच ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

बाद बात मतलब की करूंगा समय आने के बाद। साकी के चसे मर्दीद को सागर बना के पी, उनको बिठा के सामने।

0: आप किस ब्यूटीफुल सॉन्ग और सॉन्ग के साथ साथ आप लोगों की लाइव कॉल्स और मेरे पास सिर्फ और सिर्फ दो मिनट है और दो मिनट में हम चेक करेंगे कॉलर कॉर्नर कहाँ से होगा. हेलो. ओके जी आवाज नहीं आ रही है. हेलो
1: अस्सलामुअलैकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम. कौन कहाँ से?
1: यार यार जी सईद बात कर रहा
0: हूँ. सईद है मैं जल्दी से गाना सुना दे.
1: जरूर भी सुनाऊंगा. मगर लास्ट में पहले आया हूँ थोड़े टाइम बचा है. गाना तो नहीं सुन पाऊंगा मगर आपको सुनवा रहा हूँ.
0: ओके जी ओके.
1: और अगले सेगमेंट में आरजी जरूर भी है गाना प्ले करना में जो आपको सुना रहा हूँ ना.
0: ओके
1: जरूर भी. और गाना के बोल ये सिंधी सॉन्ग है. को तुंजो इतरवाजे को एटीए तो प्यो बुदराए नत सोनियार जी रुखतारे ते चैनल सखर में भला भी रखे उछाए को तुंजो इतरवाजे.

0: ओके वेरी नाइस, बहुत अच्छा गाना। ओके जी, थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू, अपने बहुत सारा ख्याल रखे, अल्लाह हाफिज। और हम जाएंगे न्यूज ब्रेक फॉलोड बाय
1: Express PM. This time check is brought to you by
2: Fakiri Neem Prickly Heat Soap.
3: Jaldi Allergy.

0: अलारमियाबाद गरन जो पानी कोट खिलाफ़ एहतजाज राजू खानी रोड से धरणो सुल्तानी केराल मां निकरंदड़ है मलाखी शाख में पानी कोट खिलाफ़ आबादगरन एहतजाज कयो। आबादगरन जो चवण है तो मेनकाई शाख से हजारे एकड़ जमीन आबाद थी है पानी कोट सां फसल सड़ी रहा है पुछड़ तक पानी पहुंचाया वे।
1: लाड़ताने वेझो बिन धुरीन में जेड़ो पुलिस फरियादिन के लाकअप करे छो मुतासरन जो एसएसपी चौक ते धरणो गोठ हुसैन भुट्टो जे रहवासी नौरतन समेत पाक किताब खणी पुलिस खिलाफ धरणो आयो। मुजाहिरीन मौजूद बारन जी गाल तां जेड़े बाद बासरन तशद्दुद कयो पुलिस असांजा टे माण्हू लाकअप करे छॾिया आहिनि।
0: शिदादकोट में माल के व्यापारी कंफर खिलाफ़ शहर जो एहतजाज रिंद बरादरी के मानून फुर वाक़े खिलाफ़ मुजाहरों किया। मुजाहरीन फुर वाक़े के वी ढी गुजरी वह पुलिस अजा तीन कुछ भी ना किया जवाब गिरफ्तार कर फुर थियल रकम वापस कराई वे।
1: गड़ी खेरो में नव महीना अग लाड़काने की अस्पताल में मुबैना तौर गुम थियल शागिर्द सैयद अब्बास शाह की बाजियाबी लाए वारसन जो एहतजाज मुजाहिरीन जो सिंध बलूचिस्तान दंग ते धरणो मुजाहिरीन मौजूद शागिर्द के लाड़काने में गुम कयो वयो आहे नव महीना थी वया आहिन पुलिस कुछ न करी रही आहे नौजवान के बाजियाब करायो वञे।
2: सोलर ए बैटरी ते डायरेक्ट हले।
3: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
4: क्या आप आसाबी दर्द जोड़ों की तकलीफ
5: कमर दर्द या पट्ठों की सूजन से परेशान हैं?
4: अब दर्द को कहें अलविदा
5: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट के साथ।
4: जी हाँ
5: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश
4: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
5: ये ऑइंटमेंट
4: मुतासरा जगह पर आसानी से जज्ब होकर
5: दर्द सोजिश
4: और अकड़न से आराम पहुँचाने में मदद देता है।
5: आसाबी दर्द जोड़ों का दर्द
4: गर्दन और कमर की तकलीफ
5: पट्ठों के खिंचाव
4: चोट पुराने जख्मों के दर्द
5: और जल्दी जलन में मुफीद
4: मुतासरा जगह पर दिन में 2-3 मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
5: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट
4: तेज आराम मुआसर हिफाजत और काबले एतमाद मयार
5: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
6: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज
7: ढाडो सुठो
6: जीए एफएम 88 नेटवर्क
8: सिंध की आवाज।

मुझे कहते हैं आज ये रुखसा है आपको मेरे साथ पूरी पूरी एक बजे तक का है। वापस आ चुके हैं जी एक अदद ब्रेक के बाद और हमारा सेगमेंट बोलो तो मानी जिसमें एक अदद टंग ट्विस्टर आप लोग कह के दिखाएंगे और वो जो टंग ट्विस्टर है आज का वो कुछ इस तरीके से है कि गाना खत्म हो गया हमारा तो हम गाना चेंज करके बैकग्राउंड प्ले करेंगे और ये मैंने काफी दिन से प्ले नहीं किया।

0: तो है कि कोमल ने कंगन को कपड़े में कसकर बांधा, ठीक है, ये कहना है कोमल ने कंगन को कपड़े में कसके बांधा, और जो बंदा ज्यादा ज्यादा सही सही बोल देगा वो विन करेगा इस सेगमेंट को. सो देखते हैं कि आज का टंग ट्विस्टर कौन बोल पाता है और किसके लिए बहुत ज्यादा आसान है. तो इस सेगमेंट के फर्स्ट कॉलर, हेलो, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? कौन? नाजिया कहाँ से बात कर रही हैं? खैरपुर से. ओके नाजिया, थोड़े से लाउडली बात करें, आपकी आवाज कम आ रही है. मुझे बताएं प्रोग्राम सुनती हैं? ओके टंग ट्विस्टर सुनाए, बोलेंगी? नहीं सुना?
1: नहीं सुना.
0: मैं बता दूं फिर बोलेंगी?
1: जी
0: मैं बता दूं. ओहो नाजिया, बोला था आवाज कम आ रही है, कहीं सही जगह चली जाओ. ओके नेक्स्ट कॉलर, हेलो.
2: हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम सलाम. दुआ कवल कैसे?
2: ठीक हूँ.
0: जी मैं भी ठीक हूँ. मुझे बताएं प्रोग्राम सुन रही हैं?
2: हाँ सुन रही हूँ.
0: क्यों सुन रही हैं?
2: I don't know.
0: काम नहीं आपको?
2: नहीं तो मुझे भी नहीं होगा.
0: कोई काम नहीं आपको? मेरा शो सुनती रहती है. अच्छा
2: क्या
0: वास्ता, मतलब आप चाहती हैं कि आप मेरा शो ना सुने? कितनी बुरी बात है, कितनी बुरी बात है. अच्छा छोड़े सब, ये बताएं टंग ट्विस्टर सुनाए, बोलेंगी?
2: पहले बताऊं क्योंकि मैं कॉल लगाने में मस्त थी, तो शायद सही सुना या नहीं सुना है. एक बार बताऊं,
0: मैं रिपीट करूं?
2: हाँ.
0: कोमल ने कंगन को कपड़े में कसकर बांधा.
2: ओके, कोमल ने कंगन को
0: कपड़े में हाँ कपड़े में कसकर बांधा.
2: ओके, कोमल ने कंगन को कपड़े में कसके बांधा. कोमल ने कंगन को कपड़े में कसके बांधा. कोमल ने कंगन को कपड़े में कसके बांधा. कोमल ने कंगन को कपड़े में कसके बांधा. कोमल ने कंगन को कपड़े में कसके बांधा.
0: ऐसे ही. अच्छा हाँ, बहुत अच्छा कहा. और कुछ कहना है? कहें ना,
2: क्या कहूँ,
0: सोच में पड़ जाती है क्या कहें. चले कुछ नहीं कहना.
2: रोज रोज तो तारीफ नहीं कर सकती ना मैं.
0: रोज रोज तो तारीफ नहीं कर सकती. हाँ रोज रोज कर ले, किसको बुरी लगती है तारीफ? किसको बुरी लगती है तारीफ, बताए ना. चले ओके जी, थैंक यू सो मच. बहुत सारा ख्याल रखो, दुआ कवर.

0: टैलेंट है आप में है. चलें फिर सबको तंग करते हैं मिलके. नेक्स्ट कॉलर. हेलो हेलो. वालेकुम अस्सलाम. कौन बात कर रही है, कहाँ से?
1: शाजिया बात कर रही हूँ, लाता नाम.
0: शाजिया कैसे हो?
1: मैं ठीक हूँ, आप कैसे?
0: मैं बहुत अच्छी हूँ शाजिया. और प्रोग्राम सुनती है?
1: जी हाँ सुनती हूँ.
0: कैसा लगता है?
1: बहुत अच्छा लगता है, आपका शौक से सुनती हूँ.
0: शौक से सुनती है, बहुत अच्छा लगता है. ये तो बहुत अच्छी बात है कि बहुत अच्छा लगता है. अच्छा टंग ट्विस्टर सुनाएं, बोलेंगी?
1: एक बार बताऊंगी.
0: अच्छा सुनिएगा गौर से. कोमल ने कंगन को कपड़े में कसकर बांधा.
1: कोमल ने कपड़े में कंगन को कसकर बांधा.
0: पहले सुने तो सही गौर से, ऐसे तो खुद ही उलझ जाएंगी आप. समझ के सुने ना. कोमल ने कंगन को कपड़े में कसकर बांधा.

0: कोमल ने
1: आप तो खुद ही फंस गई हैं कपड़े में. अच्छा और कुछ कहना है शाजिया
0: जी?
1: और कुछ कहना है क्या
0: जी? आपका शो अच्छा है, आप बहुत अच्छा करती है, आपकी आवाज बहुत खूबसूरत है.
1: थैंक यू सो मच, आप भी बहुत अच्छी हैं.
0: थैंक यू,
1: थैंक यू, थैंक यू सो मच शाजिया, अल्लाह हाफिज़. और जी इसी के साथ हम चलेंगे आगे और हम प्ले करेंगे सॉन्ग, और सॉन्ग के साथ साथ 03000113488 इसके ऊपर कॉल कर रहे हैं आप लोग, और कॉल करने के बाद एक अदर टंग ट्विस्टर कह के दिखा

Okay, जी बहुत सारे मैसेजेस आप लोगों के मुझे रिसीव होते जा रहे हैं और हमें मैसेज कर दिया है गुड मॉर्निंग हाय आरजे हाउ आर यू योर शो इज वेरी नाइस दिस इज अल्ताफ अली बलोच फ्रॉम कराची वेलकम टू द शो अल्ताफ अली मौसम कैसा है कराची का

0: ਆਵੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ
1: ਓਕੇ ਵਨ ਮੋਰ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ ਹੈਲੋ
2: ਹੈਲੋ
1: ਹੈਲੋ ਕੌਣ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਕਹਾਂ ਸੇ
2: कोमल ने कंगन को कपड़े में कस के बांधा कोमल ने कंगन को कपड़े में कस के बांधा कोमल ने कंगन को कपड़े में कस के बांधा कोमल ने कंगन को कपड़े में कस के बांधा कोमल ने कंगन को कपड़े में कस के बांधा कोमल ने कंगन को कपड़े में कस के बांधा कोमल ने कंगन को कपड़े में कस के बांधा
1: रुक जाएं कौन बात कर रहे हैं
2: एस आर एच
1: ये तो बड़ा अच्छा

0: आपने कह दिया एकदम से आते साथ. याद कर रहे थे आप?
1: प्रोग्राम सुन रहे थे आपका,
0: रट्टा लगा रहे थे, कुछ और बोलते तो भूल जाते. ऐसे होता था ना कि बचपन में हम जब हमें जब कोई लेसन दिया जाता था याद करने के लिए, टीचर दे दी थी, तो हम रट्टा लगाते लगाते जाते थे. हम टीचर को कुछ और नहीं कहते थे, हम कहते थे सुन ले जल्दी सुन ले, पहले कि हमारा रट्टाफिकेशन खत्म हो जाए. अच्छा, वेरी नाइस. और कुछ कहना है?
1: बस आपका प्रोग्राम सुनने अच्छा लग रहा है.
0: ओके, आप सुनते रहे, ऐसे ही इंजॉय करते रहे, अपना बहुत सारा ख्याल रखे. ठीक है,
1: ठीक है,
0: ओके जी, अल्लाह हाफिज. और छोटे से कमर्शियल ब्रेक, स्टे ट्यून्ड.

0: सचल की सरमस्त धरती,
1: फातिये मेहरान, सिंध की एक और पहचान,
0: GAFM 88 नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।
2: साई कुछ खबर अथव
3: छा थियो सोणी
2: बिंदियन खां सोलर वारी बैटरी खराब थी पई आहे नई बैटरी कदे आणींदा
3: सोणी हिन महंगाई जे दौर में नई बैटरी जी जरूरत ही कोने पंहिंजी पुरानी बैटरी सरगोदा बैटरी सर्विस वारन डां अजु ही खणी पियो वणा उहे अधु कीमत में पुरानी बैटरी में नई प्लेटूं ऐं सेल लगाए बैटरी खे सफा नओ करे छॾींदा
2: साई पो इहा बैटरी जल्दी त खराब कोन थींदी
3: न न सोणी सरगोदा बैटरी सर्विस वारा 6 महीना गारंटी पिया ॾियनि बैटरी जी
2: वाह वाह पो साई जल्दी करियो हाणी वञो ऐं बैटरी ठाराए अचो
3: सरगोदा बैटरी सर्विस तां पंहिंजे UPS ट्रैक्टर ऐं सोलर वग़ैरह जी ख़राब बैटरीअ में नयूं प्लेटूं ऐं सेल लॻाए बैटरीअ खे नओ बणायो असां वटि भॻल ऐं फाटल बैटरी जो कमु तसली बख़्श ऐं रियायती कयो वेंदो आहे
4: हाणे सरगोदा बैटरी सर्विस ते सोलर UPS इन्वर्टर जी ख़राब ट्यूबलर बैटरीअ में ओरिजिनल प्लेटूं ऐं सेल पिणु लॻाया वञनि था
3: मिलंदड़ जुलंदड़ कम खां धोखो न खाईंदा सुठे ऐं मयारी कम जे लाइ अॼु ई तशरीफ़ आणींदा सरगोदा बैटरी सर्विस म्युनिसिपल स्टेडियम नज़्द नजम मेडिकल स्टोर वारी घिटी पुराणो बस स्टैंड लाड़काणो राबते जे लाइ मोहम्मद फारूक मोबाइल नंबर 03156829924
5: आप आसाबी दर्द जोड़ों की तकलीफ
6: कमर दर्द या पट्ठों की सूजन से परेशान हैं?
5: अब दर्द को कहें अलविदा
6: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट के साथ
5: जी हाँ
6: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश
5: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट
6: ये ऑइंटमेंट
5: मुतासरा जगह पर आसानी से जज्ब होकर
6: दर्द सोजिश
5: और अकड़न से आराम पहुँचाने में मदद देता है
6: आसाबी दर्द जोड़ों का दर्द
5: गर्दन और कमर की तकलीफ
6: पट्ठों के खिंचाव मोच
5: चोट पुराने जख्मों के दर्द
6: और जल्दी जलन में मुफीद
5: मुतासरा जगह पर दिन में 2 से 3 मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं
6: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट
5: तेज आराम मुआसर हिफाजत और काबले एतमाद मयार
6: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए
7: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ 2 दिन में डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर दिन का शो

भुल गई नमाज ध्यान विचू शौक शराब ध्यान चढ़ी मस्ती मैं तो कलमा आखा के ही जुबान विचू मोहम्मद बूटा वेखियार दी सूरत सब सूर तो विसर गया कुरान विचू छोड़ी बात तसट तस्वीरू बताओ मेरे कुफर विच लग जावई ਇਬਾਦਤ ਸੱਟ ਤਸਬੀਹ ਨੂੰ ਮਤਾ ਉਮਰ ਕੁਫਰ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਜਾਵਈ ਸੌ ਮਲਕੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਫੇਰੇ ਦਈ ਮਤਾ ਉਹ ਮਲਕਾ ਗੁੱਸ ਜਾਵਈ ਹਜ ਪੜ੍ਹ

दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: चेहरे बदलते रहे, जिंदगी वैसे ही चलती रही। दुनिया बदलती है फितरतन, इसमें हमारी कोई गलती नहीं। पलती रही दिल में उदासी, अंधेरों से लेके रोशनी तक, खामियों से खामोशियों तक, होश से लेके मदहोशियों तक। अफसोस नहीं के अफसाने लिखे, वो अफसाने मबनी अफसरदगी पर। खुदा तू देता है बेहिसाब, मेरे दर्द में थोड़ी तो कमी कर। खिले ना क्यों यहाँ अब गुलाब, फिर वही बहार की कमी, बस किस्मत हमारे ही हाथ।
1: It's 1 p.m. This time check is brought to you by
2: Fakiri Dex Ointments.
3: Tez aaram, muasir hifazat aur qabil-e-aitmad mayar.
2: Har acche store se naam lekar talab kijiye.
4: Ab aap sunenge GAFM Network par KTN News.

0: अमरीका ईरान जो एक पेदे हमलों जो सिलसिलो जारी है। अमरीका पारा ईरान की मिसाइल ड्रोन सलाहियत फिजाई दिफाई निज़ाम सामूरी रेडार साइट्स नंढन बेड़न के निशानों पायण की दावा। ईरान जो भी अमरीका से जवाबी वार। बहरीन ए कुवैत उर्दन में अमरीकी अड्डन से मिसाइल ड्रोन हमला। बहरीन उर्दन कुवैत पारा हमलों की तस्दीक मिसाइल ए ड्रोन फिजा में नाकाम बयान की दावा। पासदारा इनकलाब चाहे हमलों में अमरीकी फौज अड्डन ए दिफाई निज़ाम के निशानों बनाया वो है।
1: अमेरिकी हमलन कुछ महीनों दौरान थियल सिफारती कोशिशन के मुकम्मिल तौर से तबाह कर छो। ईरानी परदेही वजारत मूजिब अमेरिका अपना हरमुज में खुलियल तौर मुदाखलत कई जै सबब खिते में अदम तहफुज पैदा थो। आलमी बहरी कारोबार भी मुतासर थो। अमेरिका अपना हरमुज बाबत उमान में थीदड़ इजलास भी रोको।
0: खिते की मौजूदा सूरत हाल से पाकिस्तान पारा गणती जाहिर धुरियन के सब्र ए सहब करण जो मुतालबो। परदेही तर्जुमान है धुरियो छिकताण के खात्मे फौरी तौर से कदम खण इस्लामाबाद के वफामदी यादाश्त नामे से अमल कदे सफारतकारी के तरजीह दियन।
1: ईरान पारा आबना हरमुज बंद करण बाद आलमी मार्केट में तेल महंगो थी वो। कच्चे तेल के अग में 4% तई वाद। ब्रेंट कच्चो तेल 79.11 डॉलर फी बैरल थी वो है। अमेरिकी कच्चो तेल 74.36% फी बैरल विक्रो थे लगो। बेन मुल्कन के कच्चे तेल में भी वाद रिकॉर्ड।
0: बलूचिस्तान में ऑपरेशन शाबान जारी। वधिक 5 खारजी दहशतगर्द वाजिब। ऑपरेशन शाबान में जानम भेड़ो थी दहशतगर्दन जो मजमूई अंग 76 थी वो। पाक फौज एफसी बलूचिस्तान पुलिस जो कल ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी जरन मूजिब ऑपरेशन दौरान खारजन की हवाई या जमीनी कार्रवाई जरिए निशानों बनाया पे वे। 5 जुलाई का ऑपरेशन शाबान ए बिन ऑपरेशन जरिए मारजी वाल दहशतगर्दन जो अंग 114 थी पाया।

वजीर आजम शहबाज शरीफ एक डी के दौरे से कतर पहुंची वो। वजीर आजम कतर के अगोड़े अमीर शेख हमद बिन अलसानी के लाडाने से शाही खानदान से ताजियत कंदो। वफाकी आईनी अदालत इस्लामाबाद के इलाके पीर सोहावा में

0: मैसर जे सूमरा पाड़े जा रहे वासी कई खानदान जा टे मासूम बार पूरे सरार बीमारी वगे फोतिया फोतिन में गुलाम मुस्तफ़ा कबीर ए निसार सुमरो शामिल फोती बारन जे वारसन जो चवण आहे त असांजा टे मासूम बार हफ़्ते अंदर हिक ॿिए पुठियां फोती विया आहिनि। नोटिस वठी पुरेसरार बीमारी जी जांच कराए ॿारनि जूं ज़िंदगियूं बचायूं वञनि।
1: तलार में आबादगरन जो पानी खोट खिलाफ एहतजाज राजो खानी रोड से थियण सुल्तानी केदार में निकरंदड़ मनाखी शाख में पानी खोट खिलाफ आबादगरन एहतजाज कयो। आबादगरन जो चवण आए तो मनाखी शाख से हजारे एकड़ जमीन आबाद थी है। पानी खोट सबब फसल सड़ी रो है। पुछड़ तई पानी पहुंचाया वे।
0: लाड़काणे वेझो ॿिनि धुरियुनि में जहिड़ो पुलिस फरियादनि खे लॉकअप करे छॾियो। मुतासिरनि जो SSP चौक ते धरणो। ॻोठ हुसैन भुट्टो जे रहवासियुनि औरतनि समेत पाक किताब खणी पुलिस ख़िलाफ़ धरणो हयो। मुज़ाहिरीन मौजूदु ॿारनि जी ॻाल्हि तां जहिड़े बाद बासरनि तशदुद कयो। पुलिस असांजा टे माण्हू लॉकअप करे छॾिया आहिनि।
1: पाणी ते धाड़े ऐं ॿारनि जे अॻवा ख़िलाफ़ कश्मीर में क़ौमी अवामी तहरीक जो एहतजाज। काकुटन अलमदार चौक प्रेस क्लब ते रैली कढी। अॻवाननि चयो त सिंध सरकार मासूम ॿारनि जी बाज़ियाबी लाइ के बि उपाउ न आहिनि वरिता। सिंध दरिया मथां गैर कानूनी किनार अॾिया विया आहिनि। सिंध जो अवाम साज़िशनि ख़िलाफ़ ख़ामोश न वेहंदो।
0: सखर में नीगरीअ सां ज़्यादती केस में जवाबदार जी ज़मानत रद। जेल मुंतकिल। सिंध हाई कोर्ट जवाबदार मोहम्मद जाफरी जी ज़मानत वारी दरख़्वास्त रद कंदी। अदालत जवाबदार मोहम्मद जाफरीअ खे फौरी तौर पुलिस तहवील में ॾियण जो हुकुम जारी कयो। जवाबदार ख़िलाफ़ साइट थाणे ते ज़्यादती केस दाख़िल आहे।
1: घड़ी खेरो में नव महीना अग लाड़काणे जे अस्पताल में मुबैना तौर ते गुम थियल शागिर्दयाणी शागिर्द सैद अब्बास शाह जी बाज़ियाबी लाइ वारसनि जो एहतजाज। मुज़ाहिरीन जो सिंध बलोचिस्तान दंग ते धरणो। मुज़ाहिरीन मूजिब शागिर्द खे लाड़काणे मां गुम कयो वियो आहे। नव महीना थी विया आहिनि। पुलिस कुझु न करे रही आहे। नौजवान खे बाज़ियाब करायो वञे।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
4: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
3: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
4: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
3: जुड़ियों चायों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
4: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास। हर रोज कुदरती निखार।
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
4: जल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ फराम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
3: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए। हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

चेहरे बदलते रहे, जिंदगी वैसे ही चलती रही। दुनिया बदलती है फितरतन, इसमें हमारी कोई गलती नहीं। पलती रही दिल में उदासी, अंधेरों से लेके रोशनी तक, खामियों से खामोशियों तक, होश से लेके मदहोशियों तक। अफसोस नहीं के अफसाने लिखे, वो अफसाने मबनी अफसुर्दगी पर। खुदा तू देता है बेहिसाब, मेरे दर्द में थोड़ी तो कमी कर। खिले ना क्यों यहाँ अब गुलाब, फिर वही बहार की कमी बस। किस्मत हमारे ही हाथ में है, उस पे इख्तियार की है कमी बस। वो लोग भी गुजर गए, वो घर भी जल चुके, वहाँ कुछ नहीं वहाँ से अब गर्द उठे। जख्म तो भरेंगे दोस्त, वक्त की मरहम में शिफा है, पर वक्त पे रहे मैं दोस्त, वो कब किसी के लिए रुका है। झुके ना सर फैले ना हाथ, हमारे अब बस यही दुआ है। कभी कभी आए सोच, जो हुआ वो ठीक ही हुआ है। सबर से सबक जो मिले हैं, सबर से अब मेरी सुलह है। कि कोई नहीं अगर तेरा तो मेरी जान खुदा है।

एक मिनट रुकी, मेरा वेट कर। ओके देन जफी भाई टेक वन, कहा सुना माफ कीजिएगा। शालीमार गार्डन में 5:30 बजे मेरा शूट के लिए हेयर एंड मेकअप, जल्दी मेरे शेड्स ला, लेकिन पहले चेक द पैरामीटर। गानों के बढ़ते डेसिबल, चेक पे बढ़ते डेसिबल, इट्स इनक्रेडिबल। मैं इसमत चुकदाई, कैसे किस्मत को लाई, आई थिंक अबाउट दिस एट नाइट। Give it bash at the bad, the mansion mad, the mirror instinct animalistic. Mad magician, yeah, mathematician, I never take second position, I'm getting ballistic. Cataclysmic, bilibulously, dekho meticulously. Love's mere medicinal se, love kiya maine kalam se, sach bola maine kasam se. Rang dekho kaise badalte, dikhte hain sabke, karte kab se, baatein pakki, baatein kacche. I've had enough of it, but I keep going, got no option but to keep flowing. Keep the toxic out of my zone, jab tak sharif apni off of my throne. But before I gotta go, let me tell you this. One thing I need you to know, if you ever need a friend, you can call my phone.

ईमान मेरा और हम अकेले ही चलते रहे, भले ये शाम अब दिन चले, चलो रोशनी की सिर्फ चले, अभी रात पे यकीन मेरा, अजाए मुझे ये यकीन करे, हकीम है कलम।

0: It's 1:15 p.m.
1: This time check is brought to you by White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अजरक के रंगों से रंगी,
3: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज, आवाज
3: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज.

गाने सुनी लिए हैं, तो जनाब अब जबरदस्त एक गाने सुनने के लिए जरा रेडी हो जाइए, क्योंकि आपकी बोरिंग लाइफ में भरेगी चटपटा मसाला, बिकॉज आली रे आली सदर अली बॉस आपके होंठों पर 440 उल्की स्माइल लाने के लिए। तो बिल्कुल आपके होंठों पर 440 उल्की स्माइल लाते हैं, और यहाँ पर ऐसा करते हैं आगाज़ ही प्रोग्राम कर लेते हैं। आगाज़ ही प्रोग्राम किया जाएगा जी एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी नाद के साथ, तो बहुत खूबसूरत सी नाद सुनते हैं प्रोग्राम के स्टार्टिंग में, उसके बाद हम जैसे ही वापस आते हैं बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में आप लोगों के लिए क्या होने वाला है। तो बिल्कुल जी आप सुन रहे हैं व्हाइट एज एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। लगाते रहिए और खूबसूरतियाँ हासिल करते रहिए।

जी जी बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत सी नात यहाँ पर आपने सुनी, और इसी के साथ साथ आप सुन रहे प्रोग्राम व्हाइट एज एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। आपकी इस सदराव के साथ मौजूद है, मेरे साथ कौन है मुझे बताएंगे जनाब, और शामिल प्रोग्राम होना चाहते हैं तो क्या करेंगे वो भी बताएंगे, लेकिन साथ साथ आज के प्रोग्राम में टॉपिक क्या होने वाला है वो

हमें तो ये लगता है कि गर्मी के सीजन में जो है ना, अगर हम किसी से कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी कोई भी बात हो जाए, तो अगला इंसान जो होते ना वो इतना ज्यादा उसका मूड जो है वो अजीब सा होता है कि हमें उल्टा जवाब ही मिल रहा होता है, हमें अपनी सारी बातों का उल्टा जवाब मिल रहा होता है। तो आप मुझे ये बताइए कि गर्मियों के मौसम में आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा लॉयल चीज आपके लिए क्या है? और इसी के साथ साथ अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो अपना सेल फोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK, सिंगल स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और उसे सेंड कीजिए 8881 पर। अगर आप मुझे फेसबुक पर सुनना चाहते हैं तो जनाब जी लाड़काना FM 88.8 हमारा पेज ही जनाब, आइए और वहाँ पर आपको हमारे प्रोग्राम व्हाइट एशियन डी स्किन ब्यूटी शो की लाइव पोस्ट मिल जाती है, जिसे आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर कर देंगे। तो पोस्ट को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करते जाइए और बताइए आप भी हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है। ओके जी, तो यहाँ पर व्हाइट एशियन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, इनके बारे में आप लोगों को मैं बताती हूँ ताकि आप लोगों की जो नॉलेज है ना वो और ज्यादा बढ़ती रहे। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं, कोई भी प्रोडक्ट ऐसे जो कि आप लगाना चाहते हैं लेकिन आपको थोड़ी सी उनके बारे में पता नहीं, वैसे ये बात है कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट अपने स्किन के ऊपर लगाएं तो पहले उसके बारे में जान लें, समझ लें कि जो भी प्रोडक्ट हम लगाने जा रहे हैं तो इसका क्या असर है और हमारे स्किन के ऊपर इसके क्या क्या फायदे आने वाले। तो अगर हम यहाँ पर व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का जिक्र करें तो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए भाई हर तरह के प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। जैसे कि मुझे ये लगता है कि व्हाइट एज वाले जितने भी प्रोडक्ट्स हैं इसे दुनिया में हर एक इंसान इस्तेमाल कर सकता है, जैसे कि हर एक इंसान के मुताबिक इसके अंदर जो है ना वो प्रोडक्ट ऐड किए गए हैं। जैसे कि आप लोगों को व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम मिल जाएगी जो कि नाइट क्रीम है, उसके बाद आपको व्हाइट एज लवली क्रीम मिल जाएगी जो कि फेयरनेस क्रीम है, उसके बाद आपको डॉक्टर पिंपल एंटी एक्ने ट्यूब मिल जाएगा जो कि एक्ने ट्यूब है, और उसके बाद आपको व्हाइट एज ब्यूटी सोप मिल जाएगा जो कि सोप लगाने वाले लोगों के लिए, उसके बाद आपको व्हाइट एज ब्यूटी फेस वॉश मिल जाएगा जो कि फेस वॉश लगाने वाले लोगों के लिए, उसके अलावा जनाब लोशन भी मौजूद है और हेयर रिमूवल लोशंस भी मौजूद है जो कि तीन मुख्तलिफ अलग अलग फ्लेवर्स के अंदर आपको मिल रहे हैं। लेमन फ्लेवर है और खीरे का फ्लेवर है और गुलाब का फ्लेवर है, ठीक हो गया जी। ऐसे के साथ साथ अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं और आप जानना चाहते हैं कि व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स में कितनी सारी और मजीद बातें हैं तो बिल्कुल बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। और अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराना चाहते हैं तो उसके लिए आप डायल करेंगे 03-15-799-0595 बुड़ी 300-15-79-595। ओके जी, तो जल्दी से ये आपने जो ना नंबर डाल करना है अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराने और उसके बाद आपके लिए आसानी हो जाएगी कि बस आप जाएंगे और परचेज करके आएंगे, ठीक हो गया जी। तो बहुत ही बेहतरीन से प्रोडक्ट हैं व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स, आप जरूर ट्राई करके देखिएगा। और उसी के साथ साथ मैंने आज आप लोगों से सवाल पूछ लिया कि आप मुझे बताएं कि गर्मी में सबसे लॉयल चीज क्या होती है, आपको क्या लगता है बताएं मुझे जल्दी से। और यहाँ पर हजार खान जतोई भाई हमारे साथ हैं, सबसे पहले पोस्ट पर लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम बाजा, शाला खुशायो। अवेस अब्बास सोलंगी हैं हमारे साथ। ओके जी, अवेस अब्बास सोलंगी कहते हैं सदर आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ जी, आप बताइए आप कैसे? अली अकबर ब्रोही भाई हमारे साथ हैं, वालेकुम अस्सलाम। सकरन से आप हमारे साथ हैं जी, गुड प्रोग्राम, थैंक यू वेरी मच। और वेलकम करते हैं आपको भी, मोहम्मद जमान भाई आ चुके हैं, वालेकुम अस्सलाम। कहते हैं माई स्वीट बुआ जी वेलकम टू शो, आपको भी वेलकम करते हैं। और उसके अलावा हजार भाई कहते हैं कि कल आपका शो मिस हो गया था बट मैंने रिपीट सुना था। चले बहुत बेहतरीन, थैंक यू सो मच, आपकी मोहब्बतें हैं जी कि आप अगर शो नहीं सुन पाते तो आप रिपीट सुन लेते हैं, सुनकर अच्छा लगता है। और अली अकबर ब्रोही भाई कहते हैं मुमताज मौलाई सुनाइएगा, बिल्कुल मुमताज मौलाई सुनाएंगे। और अली अकबर ब्रोही कहते हैं सकरन से आदि सिद्रा प्रोग्राम की क्या तारीफ करें, अच्छी आवाज के साथ साथ प्रोग्राम बहुत जबरदस्त हो रहा है, सॉन्ग सुनाइएगा, सॉन्ग की रिक्वेस्ट बिल्कुल आपकी पूरी करेंगे जी। और अवेस अब्बास सोलंगी कहते हैं आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ जी, आप बताइए आप कैसे? और लिखते हैं सरफराज कहते हैं ये गोरा करेगी, बिल्कुल जी गोरा करेगी, अगर आप यकीन करें तो आप इस्तेमाल करके देखें पहले, उसके बाद जब आपको रिजल्ट मिलेंगे तो आप खुद ही कहेंगे कि जी वाह वाह वाह सिद्रा बाजी बिल्कुल ठीक कह रही थी। ओके जी, उसके अलावा मोहम्मद जमान भाई क्या कर रहे हैं क्या कर रहे हैं? ओके जी, पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए। और इसी के साथ साथ जी है ना आपने क्या करना है, आपने टॉपिक को फॉलो करना है। और फहद डेरी हमारे प्रोग्राम में आ चुके हैं, सऊद डेरी है फ्रॉम नवाबशाह, कहते हैं सलामती शो नाइस से आपका बहुत शुक्रिया प्यारे भाई। और ये मौजूद है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। क्या बात है जी, दोनों बल्कि तीनों चीजें एक साथ बोल दी आपने, नाम तो लिखा ही नहीं आपने अपना, तो नाम लिखिए और बताएं जरा कौन हमारे साथ है और आप कौन सा प्रोग्राम सुन रहे हैं जी। आप सुन रहे हैं व्हाइट एज एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के दावे से। तो आपका हमारे साथ

पूरी पूरी 3 बजे तक यहाँ पर टाइम हो जाता है, जरा हम शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जानिब जाते हैं, उसके बाद जल्दी वापसी आप लोगों के पास आते हैं। तो आपने कहीं नहीं जाना, यही रहना है, मौजूद रहिए और सुनते रहिए। मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूँ। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग। वाइट एज एंड डी स्किन ब्यूटी शो इज स्पॉन्सर्ड बाय वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। लगाते रहिए ताकि खूबसूरत होते रहे।

0: GAFM 88 Network, सिंध की आवाज।
1: क्या आप आसाबी दर्द, जोड़ों की तकलीफ,
2: कमर दर्द या पट्ठों की सूजन से परेशान हैं?
1: अब दर्द को कहें अलविदा
2: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट के साथ।
1: जी हाँ,
2: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश
1: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
2: ये ऑइंटमेंट
1: मुतासरा जगह पर आसानी से जज्ब होकर
2: दर्द, सोजिश
1: और अकड़न से आराम पहुँचाने में मदद देता है।
2: आसाबी दर्द, जोड़ों का दर्द,
1: गर्दन और कमर की तकलीफ,
2: पट्ठों के खिंचाव, मोच,
1: चोट, पुराने जख्मों के दर्द
2: और जल्दी जलन में मुफीद।
1: मुतासरा जगह पर दिन में 2 से 3 मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
2: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट,
1: तेज आराम, मुआसर हिफाजत और काबिले एतमाद मयार।
2: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
3: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: तू ना मेरा हेटर, तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा, वाइटमिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फौरी एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एच ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एच ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं प्रोडक्ट्स तो कितने सारे और कितने अच्छे अच्छे वाले प्रोडक्ट्स हैं। और इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, आप लोगों को वेलकम एंड खुश आमदीद कहा जाता है। तो जनाब जी बताइए जरा, आप जो है वो कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं, कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि काफी टाइम हो चुका है आप लोगों को बताते आ रहे हैं कि जब आप वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों को कितने सारे फायदे मिलते हैं। तो जो लोग नए हैं, जिन्होंने हमें पहली मरतबा सुनना स्टार्ट किया है, या फिर जिन लोगों का आज पहला दिन होगा प्रोग्राम में, उनको भी वेलकम करते हैं और साथ ही साथ उनको भी बताते हैं जनाब, अगर आप भी वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप लोगों की खूबसूरती के लिए कितने ज्यादा बेहतरीन साबित होने वाले। तो बिल्कुल जी, अगर आप भी वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों को सबसे पहले जो है ना, मैं वाइट एज ब्यूटी क्रीम के बारे में बताती चलूं। तो वाइट एज ब्यूटी क्रीम जो है, ये भाई एक नाइट क्रीम है। अगर बहुत से लोग हैं जिनकी भाई ब्यूटी जो है उनको ये कहती है कि हमारी अब स्किन को जो है जरूरत हो चुकी है नाइट क्रीम की, तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो नाइट क्रीम लगाना पसंद करते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको नाइट क्रीमें लगाना पसंद नहीं होती। और वजह कुछ यूं होती है कि भाई आप लोग जो होते हैं, आप लोगों को ये पता होता है कि भाई जो नाइट क्रीमें होती हैं वो या तो आपकी स्किन को खराब कर देती हैं, या तो फिर वो जल्दी में अगर आपको गोरा बना देंगे तो उसके अंदर केमिकल्स होंगे। तो इस तरह का अगर सीन आपके जहनों में भी है तो ये चीज आप लोगों को बताएंगे कि जब आप व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने वाले हैं, और बात आती है व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम की, तो व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम में आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जनाब नेचुरल अज़ा से तैयार किए गए प्रोडक्ट है। जैसे कि इसके अंदर एवोकाडो मौजूद है, मिल्क मौजूद है, एलोवेरा मौजूद है, और इस तरह के नेचुरल अज़ा जो कि आप लोगों की खूबसूरती को जो है वो बढ़ाएंगे और आपकी स्किन को जो है हमेशा अपनी असल जो है ना, वो हकीकत में आप लोगों को ऐसा होगा कि अगर आपकी स्किन जो है वो पहले अच्छी होती थी, पहले गोरे होते थे, आप लोग वक्त के साथ आपके चेहरे पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो चुकी हैं, आपकी स्किन जो है वो काफी ज्यादा डल थी, डल हो चुकी है, आपके चेहरे पर रिंकल्स आ चुके हैं, आपके चेहरे पर निशानात बढ़ चुके हैं, आपके चेहरे पर जो है ना आंखों के हल्के बहुत ज्यादा आ चुके हैं, तो व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करेंगे तो आपके चेहरे पर जो है ना जितने प्रॉब्लम्स हैं, रिंकल्स हैं, डार्क स्पॉट्स हैं, आपकी स्किन जो है वो जनाब इन तमाम साइड इफेक्ट से आपको पाक रखेगी और आपकी स्किन हमेशा आपको फ्रेश बनाए रखेगी और आपकी स्किन हमेशा ग्लो करती रहेगी। तो व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम आप इस्तेमाल करेंगे, और नाइट क्रीम है तो इसी जाहिर सी बात है आप रात के टाइम इस्तेमाल करने वाले हैं। और उसके अलावा अगर आप व्हाइट एज का ब्यूटी सोप लगाना चाहते हैं, यानी कि बहुत से लोग होते हैं ना जो कहते हैं हम सोप लगाते हैं, तो अगर आप सोप लगाने वाले लोग हैं तो आपके लिए व्हाइट एज ब्यूटी सोप मौजूद है, और अगर आप फेस वॉश लगाने वाले लोग हैं तो आपके लिए व्हाइट एज फेस वॉश भी मौजूद है। और व्हाइट एज फेस वॉश जो है उसके बारे में आप लोगों को बताएं तो व्हाइट एज का जो फेस वॉश है ना, ये विटामिन सी से तैयार किया गया है जो आपकी स्किन को ब्राइट बनाएगा, एंटी एजिंग के लिए है, और विटामिन सी के साथ साथ इसके अंदर विटामिन ई भी मौजूद है। और जनाब क्रीमी फेस वॉश है तो आप लगाते रहिए, आपकी खूबसूरती आपको मिलती रहेगी। बाकी अगर व्हाइट एज की सोप की बात करें तो सोप के अंदर आपको एवोकाडो मिल रहा है, मिल्क मिल रहा है, और जनाब एलोवेरा मिल रहा है। ओके जी, तो ये तो हो गई बात कि आप नाइट केयर अगर करना चाहते हैं तो जनाब उसके लिए आपके पास सोप

और फेयरनेस क्रीम जो होती है इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी स्किन को जो है ना वो फेयर बनाने के लिए, आगे दिन के जो है ना जितने भी काम आप करते हैं या फिर दिन में अगर आपको ये लगता है कि हमारे पास मेकअप का टाइम नहीं है या मेकअप आपको सूट नहीं करता, तो व्हाइट एज लवली क्रीम बस थोड़ी सी मिकदार आप अपने स्किन के ऊपर लगा लेंगे और आप रेडी हो चुके होंगे। और उसके अलावा व्हाइट एज लवली क्रीम की आप लोगों को जरा तफसील के साथ बात बताऊं तो व्हाइट एज लवली क्रीम जो है ये रेडियंट अल्ट्रा वाइटामिन के साथ तैयार किया गया प्रोडक्ट है जिसके अंदर आपको 30 वाइटामिन के कैप्सूल मिलते हैं, यानी कि इसे तैयार किया गया है तो इतने अच्छे तरीके से तैयार किया गया है कि जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों को पता चले कि वाकई आप कितना अच्छा प्रोडक्ट इस्तेमाल करें। और इसी के साथ साथ बात यहीं पर खत्म नहीं होती जनाब, व्हाइट एज लवली क्रीम के अंदर आपको सनस्क्रीन भी मिल रही है, यानी कि अगर आप ब्यूटी हासिल करना चाहते हैं लेकिन ये वाला भी सीन बन जाता है कि आपको नहीं पता कि भाई हम जो है ना वो सन से किस तरह अपनी स्किन को जो है ना प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर देखा जाए अगर आप बाहर निकलते हैं गर्मियों के मौसम में तो धूप के जो असरात है ना ये बहुत ज्यादा खतरनाक आपकी स्किन के ऊपर आ जाते हैं। तो व्हाइट एज लवली क्रीम आपको धूप के असरात से भी बचाएगी क्योंकि इसके अंदर सनस्क्रीन भी एड है जनाब, तो आप बस बेफिक्र होकर लगाइए क्योंकि व्हाइट एज लवली क्रीम आप सारे लोगों के लिए है। तो ये बहुत ही एक अच्छा वाला प्रोडक्ट है जिसे आप, मैं तो चाहती हूँ कि सारे लोग ट्राई करके देखें ताकि आपको पता चले कि वाकई मार्केट में कितने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट अवेलेबल हो चुके हैं। इसी के साथ साथ डॉक्टर पिंपल एंटी एक्ने ट्यूब के बारे में अगर आप लोगों को थोड़ा सा बताते चले तो डॉक्टर पिंपल एंटी एक्ने ट्यूब उन लोगों के लिए जिनके चेहरे पर एक्ने बहुत ज्यादा होते हैं, दानों का मसला आपके चेहरे पर है और दाने अगर आप अपनी स्किन पर भगाना चाहते हैं खत्म करना चाहते हैं तो आपको डॉक्टर पिंपल एंटी एक्ने ट्यूब का इस्तेमाल करना होगा। और ना सिर्फ डॉक्टर पिंपल एंटी एक्ने ट्यूब आपके चेहरे के दानों को खत्म करता है बल्कि आपके चेहरे पर जो एक्ने के निशानात आ जाते हैं या एक्ने किसी भी साइज का हो, ऐसा सोचते होंगे कि भाई ये क्या नॉर्मल एक्नेज के लिए, तो ऐसा नहीं है, हर तरह के एक्नेज को खत्म करने के लिए डॉक्टर पिंपल एंटी एक्ने ट्यूब आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके अलावा आपके चेहरे पर ब्लैक पोर्स हो, ब्लैक हेड्स हो, व्हाइट हेड्स हो, एक्स्ट्रा ऑयल हो या फिर आपके चेहरे पर कोई चोट का निशान है, कोई जलने का निशान है, इस तरह के निशान भी अगर आपकी स्किन के ऊपर मौजूद है तो डॉक्टर पिंपल एंटी एक्ने ट्यूब का इस्तेमाल करके आप इन तमाम चीजों से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। और डॉक्टर पिंपल एंटी एक्ने ट्यूब लगाएंगे तो आपकी स्किन बेदाग, गोरी और क्लियर हो जाएगी। अच्छा, डॉक्टर पिंपल एंटी एक्ने ट्यूब को लगाने के तरीकेकार अगर आप लोगों के साथ शेयर किए जाए तो डॉक्टर पिंपल एंटी एक्ने ट्यूब को आप सुबह में भी लगाएंगे और रात में भी लगाएंगे, यानी कि दो दफा आपने लगाना होता है, ठीक है। जैसे आप कोई भी क्रीम एक मरतबा लगाते हैं, जैसे व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम आप नाइट क्रीम है तो रात के टाइम लगाएंगे, तो बिल्कुल वैसे ही डॉक्टर पिंपल एंटी एक्ने ट्यूब जो है इसे आप सुबह में भी लगाएंगे और रात में भी लगाएंगे। हो सके अगर एक्ने कुछ ज्यादा ही है तो आप 3 मरतबा लगाएं, नहीं तो भाई 2 मरतबा जो है वो काफी होता है। तो सुबह को अगर आप इस्तेमाल करें तो अपने कामों से फ्री हो जाएं, उसके बाद अपना फेस वॉश करें, अच्छे से अपने फेस को क्लीन करें और उसके बाद क्या करें जी, हाथों को भी अच्छे से क्लीन करें और उसके बाद डॉक्टर पिंपल एंटी एक्ने ट्यूब का थोड़ा सा मकदार अपने चेहरे पर इस्तेमाल करें, जहां जहां एक्ने है, जहां जहां निशानात, जिन जिन चीजों को आप खत्म करना चाहते हैं वहां पर लगाइए, उसके बाद छोड़ दीजिए, कुछ टाइम के बाद फिर से फेस वॉश कर लीजिएगा। रात को भी अगर आप यूज करना चाहते हैं तो बिल्कुल यही तरीकेकार इसे फॉलो करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डॉक्टर पिंपल एंटी एक्ने ट्यूब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, बिल्कुल जी आजमाए हुए प्रोडक्ट्स हैं और आप लोगों को मैं यही कहूंगी कि आप लाजमी ट्राई करके देखिएगा। उसके साथ साथ अगर आप भी चाहते हैं कि आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर ये तमाम प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं है तो आप अवेलेबल कराएंगे जनाब, उसके लिए आप डायल कीजिएगा 03-15-799-0595 बुड़ी 315-79-595। बिल्कुल जी ही नंबर आहे जेको तव्हांजे आसानी जे लाइ आहे, अगर तव्हां पंहिंजे करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल कराईंदा त इहो नंबर तव्हांखे लास्ट में डायल करणो पवंदो। नंबर खे तव्हां जेको आहे न डायल कयो, कॉल कयो या मैसेज कयो, उन्हनि खे ॾसियो बाबा साईं त तव्हां फलाणी जॻह खां आहियो ऐं तव्हांजे एरिया में व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स कोन मिलनि पिया ऐं कोन मिलनि पिया, ज़ाहिर सी ॻाल्हि आहे अवेलेबल कराए छॾियो जीअं तव्हांखे आसानी थिए ऐं तव्हां वठी सघो।

ओके जी, आज के प्रोग्राम में मैंने आप लोगों से सवाल पूछा कि आप मुझे बताएं कि गर्मी में सबसे लॉयल चीज आपको क्या लगता है, क्या हो सकती है? गर्मियों में तो वैसे हर किसी के ऊपर जो ना हमें शकी हो रहा होता है लेकिन आप मुझे ये बताइए कि आपकी नजर में गर्मियों में सबसे लॉयल चीज क्या है? ओके जी, जल्दी से हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनिए 881 और फेसबुक पर हमें ज्वाइन करते रहिए, और इसी के साथ साथ फेसबुक वाले लोग पोस्ट को लाइक और शेयर करिए।

यहाँ पर प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एज एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। अच्छा, हमारे साथ आप लोगों के मैसेजेस हैं, सर आपके मैसेजेस की जाने भी आ जाते हैं। ये हमारे साथ ही दादू खान इमदाद जतोई, अब्दुल खालिक जतोई, मुबशर हुसैन जतोई, किफायतुल्लाह जतोई भाइयों को वेलकम करते हैं जी। और दादू खान हैदरी फारूक है, हैदर जतोई, सॉन्ग मास्टर मंजूर का प्ले कीजिएगा कब्र ते लिखी सजो। ओके भा मां कोशिश क्या दी तमा जो गानो अलाइंदा जी। उनके अलावा मेरे खास अब्दुल्ला बहर कहते हैं अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम भाईजान, कहते हैं वाइट एश ब्यूटी क्रीम जबरदस्त है, क्या बात है अब्दुल्ला भाई, बहुत शुक्रिया। और ये हमारे साथी मीरपुर खास अब्दुल्ला महर कहते हैं अस्सलाम वालेकुम भाजी, व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम तो नाइस है, अब आप हमें गाना सुनाइए शमन का। बिल्कुल जी, आपको शमन का गाना सुनाते। और गोच नबीदाद बम्बरो नारो अच्छा नबीदाद बम्बरो नारी खां इमाम डिनो बम्बरो भाषा से अगर मौजूद आए तो मबतू प्यारे भाजू मैसेज एतरो कयो आहे या मिसिंग पार्ट अची वियो आहे।

ओके ओके जी, ये हमारे साथ हैं, क्या हाल है सिटो जानी, आई एम हैप्पी गर्ल। ओके जी, हैप्पी गर्ल हमारे साथ हैं, हैप्पी हैप्पी, और कहती हैं 3 साल के बाद आपकी आवाज सुनी है, सच्ची बताऊं बहुत खुशी हुई। थैंक यू सो मच हैप्पी, आपको वेलकम करते हैं। और कहती कल लाहौर से वापस आई हूं और आज ही आपका शो ज्वाइन किया है जानी, थैंक यू थैंक यू। और लिखती हैं कि मुझे लगा नहीं ऐसा कोई सीन नहीं है। आप बताएं जरा, आप क्यों इतना टाइम गुम सुम सी रही और ऐसे गई कि 3 साल लगा दिए। और आपको वेलकम करते हैं, बहुत शुक्रिया वापसी आने पर। और नाजिश हमारे साथ है, नाजिश फ्रॉम लाड़काना, अस्सलाम वालेकुम। अभी आप कैसी हैं? आप ही 4 साल के बाद मैसेज कर रही हूँ, प्रोग्राम जो भी हो आप होती हैं तो 14 चांद लग जाते हैं प्रोग्राम को। अरे भाई कैसी बातें कर रही हैं, इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस करेंगी, हाय हाय दिल ले लेंगी। एक ही दिल है मेरे पास। अच्छा ये मौजूद है हमारे साथ, गुड इवनिंग, हाय सिद्रा जी, हाय टू यू, और कैसी हैं आप, आपका शो बड़ा अच्छा है। और आप हमारे साथ हैं, दिस इज अल्ताफ अली गादी बलोच फ्रॉम कराची। ओके अल्ताफ, आपको वेलकम करते हैं बहुत शुक्रिया के साथ साथ। ओके जी, ओके लैला, और बहुत सी लड़कियों का नाम भी लैला होता है, जो लैला नाम की लड़कियां हमें सुन रही हैं। क्यों भाई बताओ जरा। लैला से कुछ पूछना चाह रहा था, ये चलें जी पूछ लिया होगा। और उसके साथ साथ अगर आप हमारे साथ मौजूद प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं तो 8881 और फेसबुक पर आप हमें ज्वाइन करते जा रहे हैं। बिल्कुल जी, आप सुन रहे हैं व्हाइट एश एंड स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। और आपकी सिद्रा आपके साथ मौजूद है, तो मेरे साथ कौन है मुझे बताते जा रहे हैं। और मुझे बताइए गर्मी में आपको क्या लगता है, कौन सी चीज ज्यादा लॉयल है।

मेरी सोच छन्नों की आंख में एक नशा है और गाल पे उसके दिल का निशा है। आय हाय ओके जी, मूसा कोरी हमारे साथ मौजूद है। कहते सलाम अदीब, वालेकुम अस्सलाम, अदा छाला खुश आयो। प्रेमचंद हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जी, ठीक ठाक है।

ओके जी, क्या भाव है, शन्नो तो लश्कारे मारेगी क्योंकि शन्नो वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट जो लगा रही है। तो अगर आप भी लश्कारे मारना चाहते हैं, अगर आप भी खूबसूरत बनना चाहते हैं, खूबसूरती की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं, तो वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कीजिए ना। ओके जी, गफार खान चाचड़ हमारे साथ हैं, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम बाजी, क्या हाल चाल है आपके, कैसी हैं, शोला जवाब है, वेरी नाइस। और गफार खान चाचड़ गोटकी से हमें सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। आदिल हुसैन कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, आप कैसी हैं, ख्वाहिश को जुनून ना बनाए, जिंदगी में बहुत कुछ हमारे लिए नहीं होता। बिल्कुल जी, आप सही कह रहे हैं। अच्छा, मोहम्मद जमान भाई लिखते हैं कि बहुत सारी चीजें फायदेमंद है, उनमें कुछ ये भी है। चलें चलें, ये सही हो गया। और कहते अगर टॉपिक फनी आंसर दिया जाए तो किसी की यादें जो गर्मी का एहसास मिटा देती हैं, सच्ची में। मैं भी ट्राई करके देखूंगी, क्या पता मेरी भी गर्मी कहीं दूर हो जाए। और उसके अलावा अवेस, अब्बास सोलंगी और सरफराज हैं। ओके जी, थैंक यू थैंक यू। अच्छा, जावेद अली रिंद हमारे साथी, वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे हैं, ठीक ठाक। गुलाम रहीम बलोच हमारे साथी, वालेकुम अस्सलाम, प्रोग्राम आपको पसंद आ रहा है, बहुत शुक्रिया उसके लिए। और मलिक मोहम्मद आदिल हमारे साथ, वेलकम जी वेलकम। ओके जी, आदिल आपको गाना सुनाएंगे और कहते हैं सिंधी में टॉपिक रिपीट करें। अच्छा, टॉपिक सिंधी में यो आहे त तव्हां मूंखे ॿुधायो त गर्मी में तव्हां खे छातो लॻे त कहिड़ी शइ जेका आहे उहा ज़्यादा तव्हां सां सची आहे। लॉयल जो मतिलबु हूंदो आहे ख़ैर ख़्वाह, सचो, बावफ़ा। त तव्हांखे छातो लॻे गर्मी में उहा कहिड़ी शइ आहे जेका तव्हां सां सची आहे? छो त तव्हां ॾिठो हूंदो त बिजली बि धोखो ॾेई वेंदी आहे, इलाही सारी चीज़ूं आहिनि जेके गर्मी में धोखो ॾेई वेंदियूं आहिनि। असां चवंदा आहियूं अई कहिड़ी शइ हुजे जेका गर्मी में असांखे सफ़ा धोखो न ॾे। सो तव्हां ॿुधायो तव्हांजी नज़र में कहिड़ी आहे। हुन खां अलावा सरफराज अली सोलंगी हमारे साथ हैं। जी मैं ठीक हूँ सरफराज, आप बताएं आप कैसे हैं, गोरजा से आप हमारे साथ मौजूद हैं। और जी मोहम्मद ताहिर लुंडे, वालेकुम अस्सलाम, वेलकम करते हैं। और फराज अली बिरोही आ चुके हैं, गुड शो, थैंक यू।

0: हजार भाई कहते हैं टॉपिक एसी, एसी वफादार होते हैं, धोखा दे देती है भाई और एसी तो कुछ ज्यादा ही धोखा देती है। अभी जल्दी से हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते जाइए, पोस्ट को जरा लाइक और शेयर करते जाइए और उसके अलावा बताइए आप कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, क्योंकि आपके पास मौजूद है बहुत ही अच्छे वाले प्रोडक्ट और बहुत ही बेस्ट क्वालिटी और बहुत ही अच्छी वाली क्वांटिटी के साथ साथ आपको मिल रहे हैं व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट, क्योंकि आप इस्तेमाल करेंगे हर तरह की स्किन के मुताबिक तैयार किए गए मर्द हज़रातों ख़वातीनों सारे लगाएंगे और खूबसूरत हो जाएंगे। इसी के साथ साथ यहाँ पर टाइम हो जाता है जरा हम न्यूज़ ब्रेक की जानिब जाते हैं, उसके बाद शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक होने वाला है, वापसी जल्दी आप लोगों के पास, सुनते रहिए एंजॉय कीजिए और हमारा साथ दीजिए। मैं यूं जाकर यूं वापस आती हूं, सो स्टे ट्यून्ड स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग व्हाइट एज एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स।
1: अब आप सुनेंगे जीएफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।

0: अमरीका ईरान जो इक्वे ते हमलन जो सिलसिलो जारी है। अमरीका पारा ईरान के मिज़ाइल एंड ड्रोन सलाहियतन फिजाई दिफाई निज़ाम सामूंडी रेडार साइट्स नंढन बेड़न के निशानो बणाइण की दावा। ईरान जो भी अमरीका से जवाबी वार बहरीन कुवैत उर्दन में अमरीकी एयरन से मिज़ाइल एंड ड्रोन हमला बहरीन उर्दन कुवैत पारा हमलन की तस्दीक मिज़ाइल एंड ड्रोन फिजा में नाकाम बणाइण।
1: अमेरिकी हमलन कुछ महीनों दौरान थियल सिफारती कोशिश के मुकम्मिल तौर तबाह कर छो। ईरानी परदेही वजारत मूजिब अमेरिका अब हरमुज में खुलियल तौर मुदाखलत कई जै सबब खिते में अदम तहफुज पैदा थो। आलमी बहरी कारोबार भी मुतासर थो। अमेरिका अब हरमुज बाबत ओमान में थीदड़ इजलास बे रोको।
0: खिते की मौजूदा सूरत हाल से पाकिस्तान पारा गणती जाहिर। धुरन के सब्र ए साफ करण जो मुतालबो। परदेही तर्जुमान चवाया धुर चेकटाण के खात्मे लाए फौरी तौर से कदम खड़न। इस्लामाबाद के मफामती यादाश्तनामे ते अमल कर सफारतकारी के तरजीह दें।
1: ईरान पारा अबन हरमुज बंद करण बाद आलमी मार्केट में तेल महंगो थी वयो। कच्चे तेल के अग में 4% ताई वाद। ब्रेंट कच्चो तेल 79.11 डॉलर फी बैरल थी वयो आहे। अमेरिकी कच्चो तेल 74.36% फी बैरल विक्रो थियण लगो। बेन मुल्कन जे कच्चे तेल में भी वाद रिकॉर्ड।
0: बलोचिस्तान में ऑपरेशन शाबान जारी। वधिक पंज खारजी दहशतगर्द मारजी विया। ऑपरेशन शाबान में जान भेड़ो थींदड़ दहशतगर्दन जो मजमूई अंग 74 थी वयो। पाक फौज एफसी बलोचिस्तान पुलिस जो गडियल ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी ज़रियन मूजिब ऑपरेशन दौरान खारजन के हवाई ए ज़मीनी कार्रवाई ज़रिए निशानो बणायो पियो वञे। 5 जुलाई का ऑपरेशन शाबान ऐं ॿियनि ऑपरेशन ज़रिए बारजी पियल दहशतगर्दन जो अंग वधी 114 थी वियो।

0: वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक ॾींहं जे दौरे ते कतर पहुची वियो। वज़ीर आज़म कतर जे अॻोणे अमीर शेख हमद बिन खलीफ़ा सानी जे लाॾाणे ते शाही ख़ानदान सां ताज़ियत कंदो।
1: अदालत इस्लामाबाद जे इलाइक़े पीर सुहा में मोनाल रेस्टोरेंट खे रहण वारी सुप्रीम कोर्ट जे फैसले खे कारदम करार ॾेई छॾियो। अदालत सीडीए ऐं मेट्रोपोलिटन सिटी जूं अपीलूं बि मंज़ूर करे वरितियूं। स्टे ऑर्डर बि ख़तम। अदालत जे ट्रायल कोर्ट्स खे दरख़्वास्त हूंदा जल्द फ़ैसिलो करण जो हिदायत। जस्टिस हसन अज़र रिज़वी चयो त सुप्रीम कोर्ट जे फैसले में घणनि नुक़्तनि खे साम्हूं नाहे रखियो वियो। अदालत केस दाख़िल करण ऐं नज़रसानी ते बि कावड़ कई। असांखे जज़्बाती फ़ैसिलो नाहे करणो।
0: वॾे वज़ीर ऐं क़ौमी विरसे बाबति वफ़ाक़ी वज़ीर जी सदारत हेठि मज़ारे क़ाइद बाबति अहम इजलास। क़ौमी विरसे जे तहफ़ुज़ ऐं सहकार खे यकीनी बणाइण ते इतफ़ाक़। इजलास दौरान मज़ारे क़ाइद ऐं भरपासे में कब्ज़नि जो नोटिस वरितो वियो। लायन्स एरिया ऐं हद ख़ुदा दाद भरिसां कब्ज़ा ख़तम कराइण ऐं सिक्योरिटी यकीनी बणाइण ते इतफ़ाक़। मुराद अली शाह चयो त मज़ारे क़ाइद ऐं लाइब्रेरियूं क़ौमी असासो आहिनि, जन जी हिफ़ाज़त सभिनी जी ज़िमेवारी आहे। वफ़ाक़ी वज़ीर औरंगज़ेब ख़ान चयो त वफ़ाक़ी हुकूमत सकाफ़ती विरसे जी तहफ़ुज़ लाइ पुरअज़म आहे।
1: एम क्यू मगवाण वफ़ाक़ी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल जा पार्टी सरबराह डॉक्टर ख़ालिद मक़बूल सदीक़ी ते इल्ज़ाम। मुस्तफ़ा कमाल चयो त वसीम अख़्तर जे गवर्नर सिंध तौर मुक़ररीअ खे ख़ालिद मक़बूल सदीक़ी रोकरायो। फ़ैसिलो कयो आहे त मुल्क जी मौजूदा हुकूमत मॉडल खे तब्दील करे अख़्तियार ऐं वसीला शहरनि जे दर ताईं पहुचाया वेंदा।
0: फैज़गंज वेझो ॻोठ ज़फ़राबाद भरिसां नौजवान क़तल। नामालूम हथियार बंधन नौजवान आफ़ताब चांडियो खे क़तल कयो। पुलिस चयो आहे त मामले जी जांच करे रहिया आहियूं। इलाइक़े वासियुनि जो चवणु आहे त नौजवान खे पसंदि जे परणे तां क़तल कयो वियो आहे। नौजवान कुझु अरसो पहिरीं पसंदि जो परणो कयो हो।
1: अहमदपुर भरिसां हिकु ई ख़ानदान जो टे ॿार पुरसवार बीमारी सबबु फ़ौत। सिहत खातो ख़ामोश, कंहिं बि नोटिस न वरितो। वॾा मैसर जे सूमरा पाड़े जा रहवासी हिकु ई ख़ानदान जा टे मासूम ॿार पुरसरार तौर ते बीमारी वगे फ़ौत थिया। फ़ौतियुनि में ग़ुलाम मुस्तफ़ा, कबीर ऐं निसार सूमरो शामिल। फ़ौतियुनि ॿारनि जे वारसनि चवणु आहे त असांजा टे मासूम ॿार हफ़्ते अंदरि हिकु ॿिए पुठियां फ़ौत थिया आहिनि। नोटिस वठी पुरसरार बीमारी जी जांच कराए ॿारनि जूं ज़िंदगियूं बचायूं वञनि।
0: सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में लेडी हेल्थ वर्कर्स खे PPHI में ज़िम करण ख़िलाफ़ एहतजाज। हैदराबाद, रंडोलियार, उमरकोट, जेकमाबाद ऐं ॿियनि शहरनि में लेडी हेल्थ वर्कर्स पारां एहतजाज कयो वियो। लेडी हेल्थ वर्कर्स चयो त PPHI में ज़िम करण वारो फ़ैसिलो क़बूल नाहे। लेडी हेल्थ वर्कर्स खे सर्विस स्ट्रक्चर ॾिनो वञे।
1: सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में पाणीअ जी चोरी ऐं खोट ख़िलाफ़ आबादगरनि जा मुज़ाहिरा। रोड़ीअ वेझो काज़ीबाग जे आबादगरनि जो आपाशी अमले ते पाणी विकिरो करण जो इल्ज़ाम। संगरार, फ़क़ीराबाद, ग़ुलाम घोट ऐं ॿियनि पुछरी जे आबादगरनि एहतजाज कयो। तलहार में आबादगरनि जो पाणी खोट ख़िलाफ़ एहतजाज। धरणो, मनाइकी शाख में पाणी छॾण जो मुतालबो। मुज़ाहिरनि मूजिबि पुछर ते पाणी न पहुचण सां पोखियल फ़सुल सड़ी रहिया आहिनि। पाणी फराहम कयो वञे।

कराची जी अदालत में ड्रग डीलर अनमोल उर्फ पिंकी खिलाफ सिटी बिन केसन जी अदालत में बुधड़ी पिंकी के साथियों के अदालत में पेश न करण ते अदालत पारा कावड़ जो इजहार। अदालत चयो त अनमोल उर्फ पिंकी के सिक्योरिटी खर्चन सबब अदालत में पेश थियण जी छूट ॾेई छॾी। जवाबदार पेश न करण कानून जी भंज कड़ी आहे। अदालत जेल सुपरिटेंडेंट के शोकाज नोटिस जारी करे छॾियो। चालान पेश करण लाइ पुलिस जी वधीक मोहलत वारी इस्तदा बि मंजूर करे वरती।

0: सत्र में निगरी सां ज्यादती केस में जवाबदार जी जमानत रद्द, जेल मुंतकिल। सिंध हाई कोर्ट जवाबदार मोहम्मद जाफरी छे समात वाली दरख्वास्त रद्द कई। अदालत जवाबदार मोहम्मद जाफरी के फौरी तौर से पुलिस टेबिल में डेण जारी हुक्म जारी किया। जवाबदार खिलाफ साइड थाने से ज्यादती केस दाखिल है।
1: ते धाड़े ए बालन जे अगवा खिलाफ कश्मीर में कौमी अवामी तहरीक जो एहतजाज। कारकुनन अलमदार चौक का प्रेस क्लब ताई रैली कढ़ी। अगवाणन चयो त सिंध सरकार मासूम बालन जी बाजियाबी लाइ के भी उपाव नाहन वरता। सिंधु दरिया मथा गैर कानूनी कैनाल अडिया पिया वञन। सिंध जो अवाम साजिशन खिलाफ खामोश न वेंदो।
0: पटियारी वेझो पुलिस गोठान में जेड़े बाद पुलिस के गोठ से चढ़ाई। पंज जणा गिरफ्तार। पुलिस अटालन गोठ मेमण की वसन से चढ़ाई कर पंज जणन के गिरफ्तार किया। चढ़ाई दौरान पुलिस पारा चार मोटरसाइकिलू वे मकदार में मनसात पिण हथ कर दावा कई।
1: बंग्लादेश में वसकारन तबाही मचाए छी। 51 जणन जे फौत थियण जी तस्दीक। लखें बेघर, हज़ारें घर बुडी वया। बे ऑफ बंगाल वारे इलाइक़े में बरसातन सबब वधीक तबाही थी। पाणी घरन में दाखिल थी वयो। केतरा ई घर मुकमिल तौर ते बुडी वया। चीन में बे बरसातन बाद आयल बोर गाडियुनि खे लोड़े छडि॒यो।
2: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
3: क्या आप आसाबी दर्द, जोड़ों की तकलीफ,
4: कमर दर्द या पट्ठों की सूजन से परेशान हैं?
3: अब दर्द को कहें अलविदा
4: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट के साथ।
3: जी हाँ,
4: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश
3: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
4: ये ऑइंटमेंट
3: मुतासरा जगह पर आसानी से जज्ब होकर
4: दर्द, सोजिश
3: और अकड़न से आराम पहुँचाने में मदद देता है।
4: आसाबी दर्द, जोड़ों का दर्द,
3: गर्दन और कमर की तकलीफ,
4: पट्ठों के खिंचाव,
3: चोट, पुराने जख्मों के दर्द
4: और जल्दी जलन में मुफीद।
3: मुतासरा जगह पर दिन में 2 से 3 मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
4: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट,
3: तेज आराम, मुआसर हिफाजत और काबिले एतमाद मयार।
4: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
5: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

तो उनके चेहरे पर इतने ज्यादा मसले आ जाते, या फिर देखा जाए तो वो खवातीन जो कि भाई अपना ख्याल नहीं रखती और ख्याल ना रखने की वजह से उनकी स्किन जो है वो काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। तो इन तमाम मसलों को देखा जाए तो आप लोगों के लिए कोई अच्छा सा प्रोडक्ट होना चाहिए जो आप लगाएं और आपकी खूबसूरती बढ़ती रहे और आप लोग मुतमिन भी रहें कि भाई हमारे पास जो है ये फलां प्रोडक्ट मौजूद है और इस प्रोडक्ट के होते हुए हमारी स्किन खराब नहीं हो सकती। तो बिल्कुल अगर हम यहाँ पर बात करें डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों को मैं बताते चलूँ कि जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करेंगे तो डी स्किन क्रीम जो है एक इतना अच्छा और इतना जबरदस्त प्रोडक्ट है जिसका मैं आप लोगों को डिटेल के साथ अगर बताऊं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ये एक नाइट क्रीम है जिसे आप रात के टाइम इस्तेमाल करेंगे। डी स्किन वाइटनिंग नाइट क्रीम है। सिर्फ दो दिनों में वाजे नतायज के लिए आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम को इस्तेमाल कीजिए, दो दिनों में आप लोगों को नतायज जो है वो बेहतरीन वाले मिल जाएंगे क्योंकि इसके अंदर जदीद अज्जा मौजूद है जैसे ये जनाब अल्फा अरबुटीन, ओजिक एसिड, ग्लूटाथायोन से भरपूर ये क्रीम है। रात भर काम करती है ताकि आपकी जल्द जो है चमकदार बनाई रहे, और उसके अलावा डार्क स्पॉट्स हैं या फिर आपके चेहरे की स्किन काफी ज्यादा डल हो चुकी है, इन तमाम चीजों को भी कम करती है और आपके चेहरे की स्किन जो है वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होना स्टार्ट हो जाती है। आपके चेहरे की अंदर तक जाकर आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करके चमकदार बनाने में जनाब ये डी स्किन ब्यूटी क्रीम पहले नंबर पर है, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम की अगर बात करें तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर वाइटामिन ई बीड्स हैं, माइक्रो बीड्स फॉर्मुलेशन है और उसके अलावा ऐसी बहुत सारी चीजें जो कि आप लोगों की स्किन को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए है। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का आप इस्तेमाल करेंगे आपके चेहरे पर जो डार्क स्पॉट्स हैं वो खत्म हो जाएंगे, आपकी स्किन ग्लोइंग बन जाएगी, आपकी स्किन जो है वो नेचुरली आपको लगेगा कि भाई वाकई फर्क आना स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना ये डॉक्टर्स की निगरानी के अंदर तैयार किया हुआ प्रोडक्ट है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई हमें तो कोई भी प्रोडक्ट सूट नहीं करता है, हमने बहुत ट्राई किए हैं लेकिन मार्केट में कोई भी हमारी टाइप का प्रोडक्ट हमें मिलता ही नहीं है, तो आप एक मरतबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करके देखिएगा और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि वाकई आप कितना अच्छा प्रोडक्ट इस्तेमाल करने लग गए हैं। तो बिल्कुल जी, डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपकी जल्द की खूबसूरती और हिफाजत के लिए तैयार की गई है। एक मयारी ब्यूटी क्रीम है जो जल्द को नमी फराहम करती है, चेहरे को नरम मुलायम और तरोताजा रखने में भी मदद देती है। अगर आप बाकायदा इस्तेमाल करते हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम का तो जी आपकी जल्द जो है वो बहुत ज्यादा खूबसूरत हो जाएगी, आपके चेहरे की स्किन हमेशा आप लोगों को लगेगा कि भाई मॉइस्चराइज है और आपकी स्किन हमेशा ग्लो करती रहेगी। और चाहे आप मर्द हजरात हैं चाहे आप खवातीन हैं, आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करके अपनी खूबसूरती को बढ़ाते रहिए और जनाब हमेशा ग्लो करते रहिए। इसी के साथ साथ डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ आपको डी स्किन फेस वॉश भी मिल रहा है। बिल्कुल जी, डी स्किन ब्यूटी क्रीम अकेली नहीं है, डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ आपको डी स्किन फेस वॉश मिल रहा है। और डी स्किन फेस वॉश की बात करें तो डी स्किन फेस वॉश हाइलोरोनिक एसिड सीरम से तैयार किया गया है जो कि आपकी स्किन के अंदर तक जाकर आपकी स्किन को क्लीन करता है, हाइड्रेट करता है और जनाब मॉइस्चराइज रखता है। तो ये इस तरह के प्रोडक्ट हैं, अगर आप इन्हें इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों को डीपली एहसास होगा कि वाकई आप कितनी अच्छे प्रोडक्ट का इंतखाब कर चुके हैं, क्योंकि अक्सर मार्केट में बहुत से प्रोडक्ट आपको मिल जाते हैं लेकिन प्रीमियम क्वालिटी वाले प्रोडक्ट जो होते हैं ना वो बहुत कम होते हैं, या फिर अगर मिलते भी हैं तो वो बहुत महंगे मिल रहे होते हैं कि आप अफोर्ड ही ना कर सके। लेकिन डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है इतनी प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं और उसके साथ साथ ये बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल रहे हैं, तो आप बिल्कुल इनका ट्राई करके देखिएगा। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ आपने डी स्किन फेस वॉश भी इस्तेमाल करना है। लगाने की तरीकेकार बिल्कुल जी वही है जैसे आप कोई भी प्रोडक्ट लगाएंगे। बिल्कुल लगाने से पहले जो है ऐसा किया करिए, अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगा रहे हैं तो लगाने से पहले आपने अपना फेस वॉश करना है अच्छे से। पहले ना आप अपना फेस वॉश किया करें, चेहरे को क्लीन किया करें, उसके बाद आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम को अप्लाई कर दें। ओके हो गया। ओके जी, इसी के साथ साथ अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोग्राम सुन रहे हैं, शामली प्रोग्राम होना चाहते हैं तो बिल्कुल जी आप हमें ज्वाइन करते रहिए। हम आ चुके हैं प्रोग्राम के दूसरे घंटे में, तो आप लोगों को वेलकम एंड खुश आमदीद कहा जाता है। और उसके अलावा आप हमें 888-1 और फेसबुक पर ज्वाइन करते जा रहे हैं। ओके जी, सो गाने हम आप लोगों के लिए लगाते रहेंगे, साथ साथ अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी क्रीम को अवेलेबल कराना चाहते हैं देन आपने डायल करना है 03-15-799-0595 बुढ़ी 315-79-5595।

आज के प्रोग्राम में टॉपिक की बात की जाए तो मैंने आप लोगों से सवाल पूछ लिया है, जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है उनको बताते हैं। तो आज के प्रोग्राम का सवाल कुछ इस तरह है कि आप मुझे बताएं आपको क्या लगता है गर्मी में सबसे लॉयल चीज क्या होती है, क्योंकि गर्मी में मुझे ये लगता है कि जिसे भी देखें जहां भी देखें तो हमें लगता है कि भाई ये चीज तो हमें धोखा दे ही देगी, लेकिन आप मुझे बताएं आपको क्या लगता है गर्मी में सबसे लॉयल क्या है।

ओके जी, आपके मैसेजेस की जाने बातें तो यहाँ पर साइमा मीर हमारे साथ मौजूद की थी। अस्सलाम वालेकुम सिंची सदा बहार आज सिद्रा मुस्कान की आयो अजवरी अल्लाह आयो भला छो और कैसे ये कहती हैं कि प्रोग्राम सफा भलो आज टॉपिक बारिश और अपने हाथ की बनी हुई चाय। क्या बात है जी, क्या बात है, आप इतनी अच्छी चाय बना दी है। और ये हमारे साथ हैं जी हैप्पी गर्ल, कहती हैं सिटो जानी वैसे ही हो, चेंज नहीं हुई है आप। हाँ भाई असा तो बिल्कुल उई आए हो, तुम्हारा तो चेंज ना हो न थे। और कहती मंगनी हो गई है, किसकी, तुम्हारी या फिर मुझसे पूछ रही हो तो चलेंगे, अगर आपकी हुई है तो आपको मुबारक और मेरी अभी तक नहीं हुई है। और ये हमारे साथ हैप्पी कहती हैप्पी सिद्धू जानी मैं फैमिली के साथ आपका शो सुन रही हूँ, बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच आपको और आपकी पूरी फैमिली को वेलकम कहते हैं जनाब। और दादू खान इमदाद जतोई, अब्दुल खालिक जतोई, मुबशर हुसैन जतोई, के फातला जतोई भी हमारे साथ है, बहुत शुक्रिया। अल्ताफ बलोच जाग जानी चाचू हैं, कहते हैं प्लीज प्ले अनवर विस्तरो, ना कैद करो मेकून डेडिकेट अज़ा को सो, जोजी बलोच एंड यू। ओके चाचू कोशिश करते हैं आपका गाना लगाएंगे। और कहते हैं अच्छा दूसरा मैसेज किया कि अगर वो गाना ना हो सके तो ये सेकंड गाना आपने लिखा है और ठीक हो गया जी। कहते हैं कि डेडिकेट डॉक्टर नजमा तबस्सुम, डॉक्टर समीना आमिर एंड यू, चलें जी ठीक है, इन दोनों गानों में से कोई एक गाना लगा लेंगे, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ।

बहुत ही प्यारा गाना यहाँ पर आप इंजॉय करें, और उसके साथ साथ जो लोग हमारे साथ फेसबुक पर मौजूद हैं पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए। और हैप्पी कहती हैं कि सिद्धू जानी मेरी बुआ सीमा भी आपका शो शौक से सुनती है। ओके जी, थैंक यू सो मच सीमा का भी और आपका भी, और उसके अलावा आप दोनों को वेलकम करते हैं। अच्छा, कमेंट्स की जाने बाते हैं, तो आज ये कमेंट्स वाले लोग हैं कहाँ भाई, ये सारे लोग आज मुझे इतने कम क्यों नजर आ रहे। और गुलाम मोहम्मद मरी बलोच हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम, आप कैसी हैं, क्या हाल चाल है, आपका शो सुन रहे हैं। हमारी फैमिली रुखसार मरी मीरपुर खासी हमारे साथ है। ओके जी रुखसार मरी, आपको वेलकम कहा जाता है। और आप ओएसटी सुनना चाहते हैं, ओएसटी आपको ये वाला लाजमी सुना देंगे, मेरा भी फेवरेट है तो हम जरूर सुनेंगे। और मूसा कोरी कहते हैं जवाब अदि पखो वा पखो चलें जी, अच्छी बात है।

लेकिन जनाब तबीयत कैसी है? मैं गुलाम फरीद जागीरानी बात कर रहा हूँ सांगी से जनाब, और सारे लोग आप चाय पियेंगे प्लीज सॉन्ग सुना दीजिएगा मुमताज मलाई का। मुमताज मलाई अभी गा कर गए हैं, आपने सुना होगा गाना, उनका बहुत शुक्रिया, आपको वेलकम करते हैं। और चाचा खाली चुनी जो कहती है अस्सलाम वालेकुम बेटा सिद्रा मुस्कान, कैसी हैं आप और आपके प्रोडक्ट दोनों खुशबाश? जी जी बिल्कुल सब मजे में है। आप बताएं आप कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर इरादा किया हुआ है अभी तक? ओके जी, सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में आप लोगों को बता रहे थे, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बिल्कुल इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि आप सब लोगों के स्किन के मुताबिक तैयार की गई है। और सबसे बेहतरीन और सबसे बड़ी बात कि ये डॉक्टर्स की निगरानी के अंदर तैयार किए गए प्रोडक्ट्स। तो जो प्रोडक्ट्स अगर आपको ऐसा थोड़ा सा शक हो ना कि भाई ये प्रोडक्ट तो हम कैसे ही लगाएं क्योंकि हमारी स्किन काफी ज्यादा सेंसिटिव है, तो आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल के बाद आपकी खूबसूरती ना सिर्फ बढ़ेगी बल्कि आप इतना ग्लो करेंगे, इतने सारे मसले जो भी आपके स्किन के साथ मौजूद है वो सारे खत्म हो जाएंगे। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जिंदाबाद बाबा, लास्ट में ट्राई करें इस जो।

चाचा क्यों आप अपने कमेंट्स को डिलीट करते जा रहे हैं भाई, पढ़ने तो दे मुझे। और कहते मोलाई सही तो चवे, बिल्कुल सही पे चवे मोलाई, वाकई लगे पयो मुखे भी। आदल लिखते हैं कि कुछ लोग दलील से नहीं मोहब्बत भरे लहजे से जीत लिए जाते हैं, मुझसे बातें करके देखो मैं बातों में आ जाता हूँ। ओके जी, बहुत बेहतरीन। और अनवर भाई हमारे साथ हैं, कहते हैं कि खुद पर सबसे ज्यादा फखर तब महसूस हुआ जब इम्तिहान में कुछ नहीं आ रहा था और पीछे से उस्ताद ने कहा सीधे बैठो, पीछे वाला देख रहा है। हाँ भाई, ये मोमेंट बड़ा जो होता है ना, वो ऐसा होता है कि भाई दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। और बिलाल अली हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम बिलाल, आप कैसे हैं, ठीक ठाक?

किशोर भाई कहते हैं सफर में आई हूँ, दुआ में याद रखो। बिल्कुल बिल्कुल, ओ हेनी सारी दुआ तमाम जलाए, अल्लाह से खैर से तमाम जो सफर गुजारे, आई तमाम खैर से पानी मंजिल ते पहुंचो। चाचा खालिद कहते हैं जी स्किन और वाइट एज के प्रोडक्ट्स लॉयल विद ऑल ऑफ अस योर टॉपिक आंसर। ओके कितनी अच्छी, देखो चाचे ने बात कर दी है। अगर आप भी अपनी खूबसूरती के साथ लॉयल बनना चाहते हैं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करके देखिएगा। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ आपको डी स्किन फेस वॉश भी मिल रहा है। अगर आप क्रीम से थोड़ा अवॉइड करते हैं तो आप पहले फेस वॉश ट्राई करें, उसके बाद आप क्रीम लगाएं, ठीक है। अच्छा किशोर भाई कहते हैं कि अदा यू मिस मी आई एम हिडकी अचिंग। यस यस मिस कया पई वाके। अनवर भाई कहते हैं दी यो तवा जको सवाल पूछा भी मोटी अच्छी बुधाए थी तवा के टाइम थियो शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो ना खापो जल्दी वापसी तवा ने मोटी चुंदा तवा करी ने जो इति बैठा हो जो सफा मा ओही वनी ओही मोटा थी। सो स्टे ट्यून स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। लगाती रही और खूबसूरत होती रही।

0: ये FM 88 Network, सिंध की आवाज।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जुड़ियों चायों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
2: जल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराहम करने और गर्मी की

0: जैसे होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सॉप।
1: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: लड़काने वसल लाए
3: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार। सिर्फ बिंदीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डी जोशो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

साउंड्स गुड. अच्छा बहुत शुक्रिया, आपको वेलकम करते हैं. उसके अलावा है जी दर्दी दिल हमारे साथ. दर्दी दिल क्या कहती हैं? अस्सलाम वालेकुम चंदा, कैसी हो? मैं ठीक, आप बताएं, आप कैसी हैं दर्दी दिल? और मूसा कोरी कहती है गानों हलाए तो फिर संचरानी, बिल्कुल तमाचो गानों हली वे.

ओके जी मलिक जफर भाई, आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया। बिलाल कहते हैं कि पार्लर के सामने बैठे हुए फकीर ने बताया कि मैंने आज तक पार्लर में दाखिल होने वाली खवातीन को बाहर आते हुए नहीं देखा। बिल्कुल जी, ये हकीकत है वैसे। ओके जी, पोस्ट को लाइक और शेयर कीजिए। और दोदा अली हमारे साथ कहते गुड योर शो, थैंक यू जी। और साजिद हुसैन सुमरो हमारे साथ, सलाम सिदरा मोलेड सलामत राम साजिद सुमरो मिठो देरो जी आवाज जानडियो। ओके जी, आप भाइयों को वेलकम करते हैं। आदिल कहते हैं फ्रॉम सिटी कंबर। ओके जी, कंबर से आप हमें सुन रहे हैं, थैंक यू आदिल। मूसा कोरी कहते हैं अदी डी स्किन ब्यूटी क्रीम कराची में मिलंदी, बिल्कुल मिलंदी, बिल्कुल मिलंदी। तां पुछा कराए ॾिसो, अगर नथी मिले तो पोइ तव्हां खे डायल करणो आहे 03-15-799-0595 ॿुड़ी 315-79-595।

हजार बार लिखते हैं, वैसे एक बात कहूँ, आपकी आवाज नाई से माशाल्लाह मौला सलामत रखे, आपको हमेशा सदा सलामत रहे आप सिस्टर, बहुत शुक्रिया भाई, मेरे को लगा पता नहीं क्या कहने वाले। थैंक यू वेरी मच। अच्छा चाचा खालिद कहते हैं मैं खुद भी सेंसिटिव हूँ और मेरी स्किन भी सेंसिटिव है, तो आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाइए और डी स्किन फेस वॉश लगाइए, ठीक है। और जवान मोहम्मद मित्तल चंबानी भाई हैं, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम बाजी, प्रोग्राम जबरदस्त आहे, सलाम सबनी दोस्तन के भाजू मोहब्बतू आहिनि, तव्हांखे चवंदा भली करे।

ओके जी, हमारे साथ ही अस्सलाम वालेकुम, हैप्पी मंडे आफ्टरनून माय स्वीट बेस्ड आज सिस्टर सिद्रा मुस्कान। आप कैसी हैं स्वीटी सिस्टर? मैं ठीक, आप बताएं आप कैसी हैं फजीला? यदि सलाम टू माय स्वीट हार्ट मॉम एंड कायनात और सब स्वीट सिस्टर्स के नाम। ओके जी, सबको वेलकम करते हैं। ओके जी, हैप्पी गर्ल हमारे साथ है। हैप्पी गर्ल ने आज इतने सारे मैसेजेस कर दिए हैं और मतलब वो 3 साल की कसर आज के दिन में मुझे लग रहा है निकाल रही है। ऐसा है ना, बिल्कुल जी लग रहा है ऐसा है। चलिए जी, आप मुझे बताएं कि आप यहाँ कहाँ, यहाँ जो है लाड़काना कब तक रहने वाली हैं? हमेशा रहेंगी या फिर दोबारा चली जाएंगी? अच्छा, ये विलेज गुलाम कासिम सोलंकी फ्रॉम हिंगोरजा से दिलावर हुसैन सोलंकी हैं। बाजी सिद्रा, आप कैसी हैं? बाजी हमारे गाने नहीं चलाती हैं, आज से हम आपका शो सुनेंगे लेकिन आपको गाने की तकलीफ नहीं देंगे। और थैंक्स फ्रॉम नजीर सोलंकी, आसिफ सोलंकी, सलीम सोलंकी, तैयब सोलंकी एंड सरफराज सोलंकी। भाईजान बहुत शुक्रिया वैसे आपका, और नाराज ना होइएगा। मैं कोशिश करती हूँ कि सबके गाने लगाऊं लेकिन किसी ना किसी का तो रह ही जाता है। तो बहुत शुक्रिया मेरे प्यारे भाई, आप हमारे साथ हैं। अच्छा, हैप्पी गर्ल की तरफ से सबको सलाम है जी। तो हैप्पी गर्ल आपको सबको सलाम दे रही हैं, और उसके अलावा चाचा खालिद आप हमारे साथ मौजूद हैं जी पैनल पर भी। और इसके अलावा कहते हैं लास्ट सैडी लिंक में हो सके तो गाना लगाइएगा, मां कोशिश क्या थी हिलाए बैठूं था। और उनका अलावा हैप्पी गर्ल कहते हैं सिद्धू जानी, मेरी सिस्टर्स सादिया और अलीजे को भी सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम सादिया, अलीजे कैसी हैं? ओके जी, मुन्नवर मुगल भाई हमारे साथ ही मीरपुर खास से कहते हैं बहना सिद्रा जी स्किन मीरपुर खास में मिल जाएगी। अच्छा, कहते हैं रोजगार करके और घूम घूम कर चेहरा मिट्टी वाला हो जाता है। बिल्कुल जी, आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल कीजिए और आप मीरपुर खास में जाइए, वहां से मालूमात लीजिए अपने करीबी जनरल स्टोर से। अगर नहीं मिलती तो जो नंबर आपको प्रोग्राम में बताया जाता है ना, उसके ऊपर एक मरतबा रब्ता कीजिएगा, एक छोटा मैसेज छोड़ दीजिएगा या फिर कॉल कर दीजिएगा, ठीक है? तो आपको मिल जाएगी। ओके, सो मुनव्वर भाई आप ऐसा कीजिएगा कि डी स्किन फेस वॉश भी लीजिएगा, बहुत अच्छा है।

तो ये हमारे साथ हैं सजाद अली जमाली नवाबशाह से आपको वेलकम करते हैं. हैप्पी गर्ल कहते हैं सिरोजानी, शो आपका पहले की तरह सुपर डुपर है. थैंक यू सो मच मेरी जान. और ये हमारे साथ हैं सलाम डियर आरजे सिदरा, खुश हो जो आमीन मिस्कीन महबूब अली मल्हा, अब्दुल कादिर मल्हा, अब्दुल समद मल्हा, अजीम सिटी सकरण से आप हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया जी. मुनव्वर भाई कहते हैं कि बहन सिदरा प्लीज 5 से 6 वाला प्रोग्राम भी मेरे को खास में कनेक्ट करवाया करें. वैसे भी 5 से रात 11 बजे तक बैक टू बैक ही चलता रहता है. अरे भाई मेरे को खास में बैक टू बैक चलता है वो ठीक अलग बात है एक, लेकिन ये है कि ये स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम होते हैं ना, तो वो कहाँ पर चलाएंगे. अगर किसी और स्टेशन पर चलाया जाए तो उसके लिए पेमेंट करना पड़ता है, तो बस ये लाड़काना में ही चलता है. अगर चला आगे जाकर तो हम मीरपुर खास भी कनेक्ट करवाएंगे, सखर भी करवाएंगे और मोरो भी करवाएंगे. बाकी अगर जो अदर स्टेशन से वो बोलेंगे भाई ऐसा कहो डो कहो, हाँ तांडे भी कराईंदा जी तांडे भी. टेंशन नंबर 2, दिल बनी क्यों.

जी आप सुन रहे हैं प्रोग्राम व्हाइट एज एंड डे स्किन ब्यूटी शो। स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डे स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। ओके जी, आबिद बिरोही हमारे साथ मौजूद हैं। आबिद बिरोही भाई, आपको भी वेलकम करते हैं।

0: ओके जी, बिलाल अली लिखते हैं कि बेशक लड़कियों में लाख बुराइयां होगी लेकिन वो मस्जिद से जूते तो नहीं चुराती। डिसो डिसो या कया ना कमच गाल। अच्छा सरफराज अली सोलंकी कहते हैं आपकी आवाज पसंद है, बहुत शुक्रिया जी।
1: खुदा नहीं पता मेरे चारों पासे गम।
0: अच्छा आमिर अली हमारे साथ कहते हैं आपका शो बड़ा सुपर डुपर है जैसे आप। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। आमिर अली बलोच फ्रॉम कंबर सिटी, गुड आफ्टरनून, हैव अ नाइस डे, अल्लाह पाक आपको हमेशा सलामत रखे, थैंक यू। और उसके अलावा पोस्ट को आप लोगों ने अगर लाइक और शेयर नहीं किया तो जल्दी से कीजिए।

भी जी, आई लव दिस सॉन्ग एंड आई लव दिस ड्रामा. ये एक ऐसा ड्रामा है जैसे देखने के बाद, मतलब मैं तो चाहती हूँ कि हर एक लड़की को ये ड्रामा देखना चाहिए. ओके जी, कफील ओएसटी, बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग, बहुत ही ब्यूटीफुल गाना और बहुत ही ब्यूटीफुल ड्रामा. ओके जी, इसके साथ हैप्पी गर्ल कहती है, सिद्धू जानी अब हमेशा लाड़काना में रहूंगी, आपको बहुत तंग करूंगी, मैं चाहती हूँ मुझे तंग किया जाए. दिल खोल कर आप मुझे तंग कर सकती हैं. अच्छा चाचा, खबर पहुंची वेंदी आहे अगली जी, दिल नंढी आहे या दिल वॾी आहे, ठीकु आहे, समुझो था. और उन खां अलावा जेको आहे सो, ये असांजे प्रोग्राम जो लास्ट ट्रेक हली वियो आहे. चाचो अल्ताफ़ जी फरमाइश काफ़ी ॾींहनि खां असांजी लिस्ट में पेंडिंग हुई, सो मूं सोचो अॼु तव्हांजी फरमाइश बि ॿुधी वेठूं था. ऐं लास्ट में ही ट्रेक हलायो आहे. जाग जानी चाचू, ये गाना आपको रेडी किया जाता है. और इसी के साथ साथ हमारे जाने का वक्त भी करीब आ चुका है, लेकिन अभी थोड़ा टाइम है. और साथ साथ आपको जरूर कहूंगी जनाब, अभी आपने अगर हमारी पोस्ट को लाइक और शेयर नहीं किया तो जल्दी से कीजिए. और उसके साथ साथ अगर अभी तक आप लोग वाइटेज ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर जी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल नहीं कर रहे तो जल्दी से इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि जब आप वाइटेज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे तो आप अच्छे से जानते हैं कि इसमें हर तरह के आपको प्रोडक्ट मिल रहे हैं, जैसे कि नाइट क्रीम है, फेयरनेस क्रीम है, एक्नी ट्यूब है, फेस वॉश है, साबुन है. और ऐसे ही आप लोग अगर डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल भी आप लाजमी कीजिएगा, खास करके उन लोगों के लिए जिनकी स्किन सेंसिटिव रहती है. आपको किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर ट्रस्ट नहीं रहता कि भाई नहीं, प्रोडक्ट नहीं लगा पाएंगे, हमारी स्किन खराब हो जाती है, तो आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कीजिए. ये डॉक्टर्स की निगरानी के अंदर तैयार किया हुआ प्रोडक्ट, और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ आपको डी स्किन फेस वॉश भी मिल रहा है, तो दोनों चीजें ट्राई कीजिए. इनफैक्ट सारे प्रोडक्ट्स ट्राई कीजिए, आपको मजे आ जाएंगे.

राम रहीम बलोच के जबरदस्त शो, थैंक यू किशोर भाई के। मैं तो ड्रामे, हाँ ये एक ऐसा ड्रामा, एक ऐसा इस ड्रामे के अंदर कंटेंट है कि मैं चाहती हूँ हर लड़की से देखे। और ये ड्रामा पता है मैंने 2 दिनों में खत्म किया था यानी कि मैं ऐसी हूँ, कोई भी चीज देखती हूँ तो मैं जल्दी खत्म कर लेती हूँ। और ये बहुत अच्छा मतलब ड्रामा, एक अच्छा, एक अच्छी स्टोरी जैसे कहते हैं ना, वो ये वाला ड्रामा था। और बाकी आजकल के जो ड्रामे बन रहे हैं उन ड्रामों की स्टोरी से जो है ना मुझे शदीद तरह की नफरत हो चुकी है इस वजह से। बाकी अगर हाँ स्टोरी अच्छी हो, कॉन्टेंट अच्छा हो तो देखने में क्या ही हर्ज है। और चाचा खालिद कहते नाइस सॉन्ग, थैंक यू। कहते मैं तंग करता हूँ तो नाराज होती है नहीं भाई आपसे कभी नाराज नहीं हुई मैं। सारी फैमिली प्रोग्राम सुन रही है, मेरी छोटी बहन कुलसुम और शहबाज वलद मिस्री जमाली ओके भाई को वेलकम करते हैं, कुलसुम को भी आपकी पूरी फैमिली को। और ये कहती हैं ड्रामे का नाम बताओ, कफील, कफील ड्रामे का नाम है। और ये उसके अलावा अब्दुल रजाक जूने जो हैं विलेज देगापुर, चलें जी अब्दुल रजाक आपको खुशामदीद।

जाने का वक्त आ चुका है, आप लोगों से इजाजत लेंगे और मुझे थोड़ा थोड़ा मिस किया करें भाई, अच्छी बात है। वरी चलो तव्हां सां मिलूं था असां पंजे बजे वारे प्रोग्राम में, छो त पंजे बजे खां छह बजे ताईं बि असांजो इहा मुंहिंजो साथ हूंदो आहे। सो पंजे बजे वारे प्रोग्राम में ज्वाइन कजो, उन खां अलावा किथे का ग़लती थी हुजे त मां माज़रत कयां थी। जंहिंजा फीडबैक रहिजी विया, जंहिंजा गाना रहिजी विया, सभिनी खां माज़रत कयूं था। सो मोकिलाणी नाहे बाबू सिन सलामत सा सलामत, पंहिंजो ओ हेॾो सारो ख़्यालु रखंदा। अलाह हाफ़िज़, बाय, लव यू ऑल एंड टेक केयर।

अमरीका ईरान जो इकबेते हमलों सिलसिलो जारी अमरीका पारा ईरान के मिजाइल एंड ड्रोन सलाहतन फिजाई दिफाई निज़ाम सामूडी रेडार साइट्स नंटन गढ़न के निशानों पाया दावा ईरान जो अमरीका से जवाबी वार बहरीन कोवैत उर्दन में अमरीकी अड्डन से मिजाइल एंड ड्रोन हमला बहरीन उर्दन कोवैत पारा हमलों की तस्दीक मिजाइल एंड ड्रोन फिजा में नाकाम बयान की तस्दीक तो पाकिस्तान इनकलाब चो तो हमले में अमरीकी फौजी अड्डन एंड दिफाई निज़ाम के निशानों बनाया वो है अमरीकी अमलन ने कुछ महीनों दौरान थियल सफारती कोशिशन के मुकम्मल तौर से तबाह कर छोड़ो ईरानी परी वजारत मूजिब अमरीका आपने हुरमज में खुलल तौर मुदाखलत कई जैसे खिते में अदम तहफ़ पैदा थो आलमी बेरी कारोबार पर मुतासर थो अमरीका अपने हुरमज बाबत ओमान में थन्द इजलास भी रोक खिते की मौजूदा सूरत हाल से पाकिस्तान पारा गणती जाहिर धुरियन के सबुर ए साहब कर मुतालबो पड़े तर्जमान धुरियों छिकजाण के खात्मे लाए फौरी तौर से कदम खड़न इस्लामाबाद के मफामद यादाश्तनामे से अमल कर सफारतकारी के तरजीह दियन ईरान पारा अपना हुरमज बंद करण बाद आलमी मार्केट में तेल महंगो थी पो कच्चे तेल जग में चार सैकड़ों तीन वाद ब्रेंट कच्चो तेल 79.11 डॉलर फी बैरल थी पो अमरीका कच्चो तेल 74.36 सैकड़ों में फी बैरल विक्रो थे लगो बिन मुल्क के कच्चे तेल में विवाद रिकॉर्ड बलोचिस्तान में ऑपरेशन शाबान जारी वधिक पंज खारजी दहशतगर्द मार जी विया ऑपरेशन शाबान में जान भेड़ो थींदड़ दहशतगर्दन जो मजमू अंग 76 थी वयो पाक फौज एफ सी बलोचिस्तान पुलिस जो गड़ियल ऑपरेशन जारी सिक्योरिटी ज़रियन मूजिब ऑपरेशन दौरान खारजी के हवाई ए ज़मीनी कार्रवाई ज़रिए निशानो बढ़ाए पे वे पंज जुलाई का ऑपरेशन शाबान बेन ऑपरेशन ज़रिए मार जी वियल दहशतगर्दन जो अंग 114 थी वो वजीर आजम शहबाज शरीफ एक डी दौरे से कतर पहुंची पो वजीर आजम कतर के कुणे अमीर शेख हमद बिन खलीफा अलसानी के लाड़ाने से शाही खानदान से ताजियत क वफाकी आइनी अदालत इस्लामाबाद के इलाके पीर सहारा में मॉरल रेस्टोरेंट के रहने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कालादम करार दी छो अदालत सीडीए ए मेट्रोपोलिटन सिटी जो अपीलू भी मंजूर कर वरतियों हिस्ट्री आर्डर भी खत्म अदालत के ट्रायल कोर्ट्स के दरखास्त से जल्द फैसलो करण की हिदायत जस्टिस हसन अजहर रिज़वी सुप्रीम कोर्ट के फैसले में घर नुकतन के सामू ना रखो वो अदालत केस दाखिल कर नजरसानी से भी कावड़ कई असा जज्बाती फैसलो ना करो परे वजीर कौमी विरसे बाबत वफाकी वजीर की सदारत हेठ मिर्जा मजार कायद बाबत अहम इजलास कौमी विरसे के तहफ़ सहकार के यकीन बनाने के इतफाक इजलास दौरान मजार कायद आए भरपासे में कब्जन जो नोटिस वरतो पो लाइन एरिया खुदादाद भरसा कब्जा खत्म करण सिक्योरिटी यकीन बनाने के इतफाक मुराद अली शाह जो मजार कायद लाइब्रेरी कौमी असासो आज जिनकी हिफाजत सभी की जिम्मेवारी है वफाकी वजीर औरंगजेब खान चो तो वफाकी हुकूमत का सकाफती विरसे के तहफ़ लपुरजम है एम क्यू मगवान ए वफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल जब पार्टी सरबरा डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी के इल्ज़ाम मुस्तफ़ा कमाल चो तो वसीम अख्तर के गवर्नर सिंध तौर मुखर्जी के खालिद मकबूल सदीकी वोकराया फैसलो किया है तो मुल्क की मौजूदा हुकूमती मॉडल के तब्दील कर अख्तियार ए वसीला शहर के दर ते पहुंचाया वेंदा मीरपुर खास में पुलिस के कोर्ट कूड़े मुकाबले में मारियल डॉक्टर शाहनवाज कतल केस की बुधनी सिंध हाई कोर्ट जवाबदान के केस खत्म करने वाली दरख्वास्त रद्द कर छी अदालत फैसले में चया है तो एफआईआर के अड़न केसन में नई एफआईआर दाखिल करने जो अख्तियार ना कानूनी गलती से जवाबदान के फायदो नो दे सदालत

0: GAC.
1: लेडी हेल्थ वर्कर्स के पीपीएच में जम कांड खिलाफ एहतजाज हैदराबाद चंडोला यार उमरकोट जकामबाद शरण में लेडी हेल्थ वर्कर्स पारा एहतजाज किया वो लेडी हेल्थ वर्कर्स पीपीएच में जम करण वो फैसलो कबूल ना लेडी हेल्थ वर्कर्स के सर्विस स्ट्रक्चर दिनों वे सिंध के मुख्तलिफ शहर में पानी की चोरी या खोड़ खिलाफ आबादगर का मुजाहरा मीरपुर खास में नारा कैनाल के आबादगर जो पानी खोड़ खिलाफ एहतजाज रोड़ी वेझो काजीबाद के आबादगर जो आपाशी हमले से पानी विकलो कर इल्जाम संग्रार फकीराबाद गुलाम घोट ए बिन पुत्री के आबादगर एहतजाज कर तलार में आबादगर जो पानी खोड़ खिलाफ एहतजाज धरणो विनायकी शाख पे पानी छड़ने जो मुतालबो मुजाहरीन मूजिब पुछड़ ताई पानी न पुछण से पोखियल फसल सड़ी रहा है पानी फराम किया वे मिठी में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में मेरठ के रिटायर्ड खिलाफ सिंधी शागिर्द तहरीक जो एहतजाज कारकुनान बिलावल पार्क का कश्मीर चौक तीन एहतजाजी रैली कढ़ी धरणो हया वो अगवान सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में शागिर्दन के ख्वाबन की सौदेबाजी कई पी वे नौकरियों वेकरो कई वन थी मेरठ के रिटायर्ड बंद कई वे कराची की अदालत में कोकीन कोइन अनमोल और पिंकी के खिलाफ सिटी के बिन केसन की बुधनी पिंकी के साथ की अदालत में पेश न कर अदालत पारा कावड़ जो इजहार अदालत चौथ अनमोल और पिंकी के सिक्योरिटी खर्च सबब अदालत में पेश की छूट डिनी हुई बया जवाबदार पेश न कर कानून की भंज कड़ी है अदालत जेल सुप्रिटेंडेंट के शोकाज नोटिस जारी कर छो चालान पेश कर पुलिस की मोहलत वाली सजा भी मंजूर कर वरती

हैदराबाद में वासा मुलाज़िमन जो 18 महीननि खां पघार ऐं पेंशन नंबरनि ख़िलाफ़ एहतियात मुलाज़िमन चुस्त कॉर्पोरेशन अख़्तियारनि जी लापरवाही सबबि 18 महीननि खां पघार ऐं रिटायर्ड मुलाज़िमन जी पेंशन जी अदाकी नाहे थी सघी। पघार ऐं पेंशन मिलण सबबि 3000 मुलाज़िमनि जे घरनि में फाका कशी वारी सूरत हाल आहे।

0: मटियारी में जो पुलिस है गोठानन में छेड़े बाद पुलिस जो गोठ चढ़ाई पंज जना गिरफ्तार पुलिस अटारन गोठ मेमण की वसंद चढ़ाई करे पंज जना के गिरफ्तार कयो चढ़ाई दौरान पुलिस पारा चार मोटरसाइकिलों वरी मकदार में मंचात पिण हथ करण की दावा बंग्लादेश में वसकारन तबाही मचाए छी एकवंजा जणन की फौत थियण की तस्दीक लखे बेघर हजारें घर बुरी व्या बिहार बंगाल वाले इलाके में बरसात सबब तबाही थी पानी घर में दाखिल थी वो केतरे घर मुकम्मल तौर से बुड़ी व्या चीन में भी बरसात बाद आयल बोर गारन के लोड़े छो
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN News।
2: क्या आप आसाबी दर्द जोड़ों की तकलीफ
3: कमर दर्द या पट्ठों की सूजन से परेशान हैं?
2: अब दर्द को कहें अलविदा
3: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट के साथ
2: जी हाँ
3: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश
2: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट
3: ये ऑइंटमेंट
2: मुतासरा जगह पर आसानी से जज्ब होकर
3: दर्द सोजिश
2: और अकड़न से आराम पहुँचाने में मदद देता है
3: आसाबी दर्द जोड़ों का दर्द
2: गर्दन और कमर की तकलीफ
3: पट्ठों के खिंचाव मोच
2: चोट पुराने जख्मों के दर्द
3: और जल्दी जलन में मुफीद
2: मुतासरा जगह पर दिन में दो से तीन मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
3: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट
2: तेज आराम मुआसर हिफाजत और काबले एतमाद मयार
3: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए
4: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहां वहां GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़

0: सकरण की हो तो आवाज भी सकरण की है।
1: सुनते रहो जी एफ एम 90.8।

0: क्या आप जोड़ों के दर्द, पट्ठों के खिंचाव, कमर दर्द या सूजन से परेशान हैं?
1: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश, फकीरी एनाल्जेसिक क्रीम,
0: कुदरती अज्जा से तैयार करदा।
1: ये मासर क्रीम मुतासरा जगह पर तेजी से जज्ब होकर
0: दर्द और सोजिश से आराम पहुंचाती है।
1: रोजमर्रा के जिस्मानी दर्द,
0: वर्जिश के बाद होने वाली तकलीफ,
1: गर्दन और कंधों के दर्द
0: और पट्ठों की अकड़न के लिए बेहतरीन इंतखाब।
1: सिर्फ मुतासरा जगह पर दिन में 3 से 4 मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
0: उम्रा और हज पर जाने वाले हजरात फकीरी एनाल्जेसिक क्रीम को अपने हमरा रखें।
1: फकीरी एनाल्जेसिक क्रीम, दर्द, सूजन, वर्म फौरी खत्म। आज ही करीबी स्टोर से नाम लेकर तलब करें।
2: अब आपकी खूबसूरती का फैन, वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: तू ना मेरा हीटर, तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा, विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एच ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एच ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: झुर्रियों छाइयों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
2: जल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
3: अजरक के रंगों से रंगी,
4: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
3: सिंध के दिल से निकली आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क सिंध।

0: हर चप्पा हर गोशा।
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

अब आप सुनेंगे जीए एफ एम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।

अमरीका ऐं ईरान जो इकबेती हमलनि जो सिलसिलो जारी। अमरीका पारां ईरान जे मिज़ाइल ड्रोन सलाहियतुनि, फिज़ाई दिफ़ाई निज़ाम, सामूंडी रेडार साइट्स ऐं नंढनि ॿेड़नि खे निशानो बणाइण जी दावा। ईरान जो बि अमरीका ते जवाबी वार। बहरीन, कुवैत, उर्दन में अमरीकी अॾनि ते मिज़ाइल ऐं ड्रोन हमला। बहरीन, उर्दन ऐं कुवैत पारां हमलनि जी तस्दीक। मिज़ाइल ऐं ड्रोन फिज़ा में नाकाम बणाइण जी दावा। पासदारनि इनकलाब चयो आहे त हमलनि में अमरीकी फ़ौजी अॾनि ऐं दिफ़ाई निज़ाम खे निशानो बणायो वियो आहे। अमरीकी अमलनि कुझु महीननि दौरान थियल सफ़ारती कोशिशुनि खे मुकमल तौर ते तबाह करे छॾियो। ईरानी परॾेही वज़ारत मूजिबि अमरीका अबन हरमज में खुलियल मुदाखलत कई, जंहिं सभु खिते में अदम तहफ़ पैदा थियो। आलमी बहरी कारोबार बि मुतासिर थियो। अमरीका अबन हरमज बाबति ओमान में थींदड़ इजलास बि रोकियो।

में पानी की खोट चोरी खिलाफ़ आबादगार जो एहतजाज, मीरपुर खास में नारा कैनाल के आबादगार जो पानी खोट खिलाफ़ एहतजाज, रोड़ी वेझो काजीबाग के आबादगार जो आबाशी हमले से पानी विको करण जो इल्ज़ाम, संगरार फकीराबाद गो गुलाम गोट ए बेनपुटी के आबादगार एहतजाज किया, तलार में आबादगार जो पानी खोट खिलाफ़ एहतजाज ए धरणो, मनाखी शाख में पानी छड़ने जो मुतालबो, मुजाहिरन वजह पुछड़ तीन पानी न पहुंचने सब पोखियल फसल सड़ी रहा है, पानी फराहम किया वे। मिटी में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में मेयर के रिटायर खिलाफ़ सिंधी शागिर्द तहरीक जो एहतजाज, काकुटन बिलावल पार्क का कश्मीर चौक से एहतजाज की रैली कड़ी, धरणो है अगवाण तो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में शागिर्द के ख्वाबन की सौदेबाजी कई पे वे, नौकरियों वेकड़ो कई पे वन, मेरठ की रिटायर बंद कई वे। कराची अदालत में कोकीन क्वीन अनमोल पिंकी के खिलाफ सिटी के बिन केसन की बुधनी, पिंकी के साथन के अदालत में पेश न करने अदालत पारा कावड़ जो इजहार, अदालत अनमोल और पिंकी के सिक्योरिटी खर्चन सबब अदालत में पेश थे छूट डी हुई, बया जवाबदार पेश न करण कानून की भंज कड़ी है, अदालत जेल सुप्रिटेंडेंट के शोकाज नोटिस जारी कर छा, चालान पेश कर पुलिस की मोहलत वाली सजा भी मंजूर कर वरती। बनवाकल में कणक जखीरो करण खिलाफ कार्रवाई, छह गोदाम सील, 22,000 बोरियों हथ खुराक खाते हसास इदारे ए पुलिस सा गड कार्रवाई क्यों, छापन दौरान कणक जो 22,000 बोरियों हथ कर छह गोदाम सील किया गया, इंतजामिया का चवण है तो कणक जखीरो करण व्यापार खिलाफ कार्रवाई कई वही है। हैदराबाद में वासा मुलाजमन जो 18 महीनों का पगार ए पेंशन नंबर खिलाफ एहतजाज, मुलाजमन चो कॉर्पोरेशन अख्तियार की लापरवाही सबब 18 महीनों का पगार ए रिटायर्ड मुलाजमन की पेंशन की अदायगी ना थी सकी, पगार ए पेंशन नंबर सबब 3,000 मुलाजमन के घर में फाका कशी वाली सूरत हाल है। कराची में वाटर प्लांट्स एसोसिएशन सदे से सिंध के मुख्तलिफ शहर में आयल मुलाजमन जो एहतजाज, मुलाजमन पारा पगारों में बात करण ए मुस्तकिल करण जो मुतालबो, अगवाण जो वाटर प्लांट से कम कर मुलाजमन के घट में घट पगार 43,000 मुकर करे पको किया वे।

0: आहे बंग्लादेश में बसकारनि तबाही मचाए छॾी। 51 ॼणनि जे फौत थियण जी तसदीक, लखे बेघर, हज़ारे घर बुॾी विया। बी आफ बंगाल पारां इलाइक़े में बरसातुनि सबबि वधीक तबाही थी, पाणी घरनि में दाख़िल थी वियो, केतिरा ई घर मुकमल तौर ते बुॾी विया। चीन में बि बरसातुनि बाद आयल ॿोर गाॾियुनि खे लोड़े छॾियो।
1: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले ऐं बाक़ी तमामु पखनि जे मुक़ाबले में तेज़ ज़बरदस्त।
2: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
4: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
3: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
4: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
3: जुड़ियों, छाइयों, कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
4: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
4: जल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ फराम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
3: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए। हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: क्या आप आसाबी दर्द, जोड़ों की तकलीफ,
1: कमर दर्द या पट्ठों की सूजन से परेशान हैं?
0: अब दर्द को कहें अलविदा
1: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट के साथ।
0: जी हाँ,
1: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश
0: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
1: ये ऑइंटमेंट
0: मुतासरा जगह पर आसानी से जज्ब होकर
1: दर्द, सोजिश
0: और अकड़न से आराम पहुँचाने में मदद देता है।
1: आसाबी दर्द, जोड़ों का दर्द,
0: गर्दन और कमर की तकलीफ,
1: पट्ठों के खिंचाव, मोच,
0: चोट, पुराने जख्मों के दर्द
1: और जल्दी जलन में मुफीद।
0: मुतासरा जगह पर दिन में 2 से 3 मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
1: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट,
0: तेज आराम, मुआसर हिफाजत और काबिले एतमाद मयार।
1: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जिल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ 2 दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
1: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

शुरू से मैं के मिले दर्द बहुत कभी तू भी मिल दिल में रहती नहीं जानम तू ही दिल आज फिर आई ना तू इंतजार रहा मुस्तकिल तवील है गम की शाम कहानी मोहब्बत की मुख्तसर नजरसानी करो जरा सी कदर करो मेरी कला की जाने वाले चले जाते हैं किस्मतें ही तो काबू में नहीं आती छाओं में धूप की तरह जिस्म में रूह की तरह।

अमरीकी सदर चयो आहे त छंछर ॾिहाड़े ईरान ऐं अमरीका हिकु बहितरीन मुआदे ते इतफ़ाक़ करे वरितो। ईरान एटमी प्रोग्राम समेत समूरनि इख़्तिलाफ़ी मामलनि तां हथ खणी वियो, पर ॻाल्हियूं ख़तम थियण जे हिकु कलाक अंदर आबनै अरुम्स में साइप्रस जे बहिरी जहाज़ ते ड्रोन हमिलो करे ॾिनो। अमरीकी सदर जो ईरानी क़यादत ते बीमार ज़हनियत जो बि इल्ज़ाम। अमरीकी सदर चयो त ईरान अमरीका हमले बाद ईरान जूं जवाबी कार्रवाइयूं, ओमान, कतर, उर्दन, बहरीन ऐं कुवैत ते हमला। ईरान पारां अमरीकी फ़ौजी अॾनि दिफ़ाई निज़ाम खे तबाह करण जी दावा। ईरान पारां आबनै अरुम्स बंदि करण जो ऐलान। ईरान पारां आबनै अरुम्स जो कंट्रोल हासिल करण जी बि दावा। कुवैत पारां ईरानी हमलनि में टे सरहदी अॾा ऐं आयल प्लेटफॉर्म तबाह थियण जो एतिराफ़।

पाकिस्तान पारां अमरीका ईरान विच में ॿीहर छिकताण वधण ते गणती जो इज़हार। ॿिन्ही मुल्कनि खे सब्र ऐं बर्दाश्त खां कम वठण जी अपील। परॾेही खाते जे तर्जुमान चयो आहे त समूरियूं धुरियूं छिकताण जे ख़ात्मे लाइ फौरी कदम खणनि। धुरियूं इस्लामाबाद मफ़ामत यादाश्त नामे तहत पंहिंजे वाइदनि ते पासदारी कनि।

गडियल कौमुनि जे सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस पारां अमरीका ईरान खे तकरार ख़तम करण जी अपील। एंटोनियो गुतेरेस अमरीका ईरान ते ज़ोर भरियो त इहे ताज़नि चक्रनि खे रोकिन ऐं उन्हनि खे ख़तम करण लाइ ॻाल्हियूं ॿीहर शुरू कनि।

ईरान ऐं अमरीका शिकतान घटाइण ऐं सब्र जो मुज़ाहिरो कनि। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार जी ईरानी परॾेही वज़ीर अब्बास इराची विच में फोन ते राब्तो। ॿिन्ही अॻवाननि पारां विच ओभर जे सूरतहाल ते ॻाल्हि ॿोल। इसहाक़ डार चयो त खिते में अमन इस्तेहकाम लाइ सफारतकारी वाइदो रस्तो आहे। ॿिन्ही परॾेही वज़ीरनि पारां राब्ते में रहण ते इतफ़ाक़। बलोचिस्तान जे इलाइक़े माशकेल में भारतीय हामी दहशतगर्दनि जो बुज़दिलाणो हमिलो। पंज पोरियत शहीद। सिक्योरिटी ज़रियनि मूजिब बुज़दिल दहशतगर्द मासूम ऐं हथे खाली पोरियतनि खे निशानो बणायो। शहीद पोरियतनि में मोहम्मद बिलाल, मोहम्मद हसन, मोहम्मद कदीर, मोहसन ऐं बिलाल शामिल आहिनि। दहशतगर्दनि जे बुज़दिलाणे हमिले में शहीद समूरनि पोरियतनि जो वास्तो पंजाब सां आहे। सिक्योरिटी फोर्सिस इलाइक़े खे कड़ो चाढ़े सर्च ऑपरेशन शुरू करे छॾियो आहे। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ, घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी ऐं वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह पारां दहशतगर्दनि जी मज़ामत। शहीदनि जे वारसनि सां ताज़ियत जो इज़हार। बलोचिस्तान में ऑपरेशन शोभान जारी। वधीक चार खारजी दहशतगर्द मारिजी विया। बलोचिस्तान में 5 जुलाई खां जारी ऑपरेशन शोभान ऐं ॿियनि ऑपरेशन में मारिजी वियल दहशतगर्दनि जो अंगु 109 थी वियो। सिक्योरिटी ज़रियनि जो चवणु आहे त सरान टंग वारे इलाइक़े में ताज़िन कार्रवाइनि में वधीक चार दहशतगर्द मारिजी विया। ऑपरेशन शोभान में जनम भेड़ो कयल दहशतगर्दनि जो मजमूई अंगु 71 थी वियो। मारिजी वियल दहशतगर्दनि जे कब्ज़े मां वॾे अंग में हथियार ऐं बारूदी मवाद हथु कयो वियो। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ कतर जे अॻूणे अमीर जे लाॾाणे ते ताज़ियत लाइ अॼु कतर वेंदो। शहबाज़ शरीफ़ कतरी अमीर शेख तमीम बिन हमदुल सानी सां शेख हमीद बिन ख़लफ़िया जे वफ़ात ते ताज़ियत कंदो। नायब वज़ीर आज़म ऐं ॿ अहम शख़्सियतूं बि वज़ीर आज़म सां गॾु हूंदियूं।

0: साजा पाता निकल रहे
1: बिल्कुल
0: पाता लेने साजो को छाड़न तो पूछा
2: ओ दिसन में कर ना आयो असा ये जरा कहूं
0: प्रार्थना कर ना आयो
2: ना आयो

पक्षा पर वेझो बी एस गुडू फीडर के आर डी 140 वटे लगल घारो बढ़िया गुजरण बावजूद बंद न थी सको। घारे जे पानी सवे गोठ बोड़े छड़ा गोठान जो अल्लाह तला लुड़ी वो सवे एकड़ फसल पानी हेठ गोठ मिश्री सुराणी वट पानी रोड मथा ओवरटॉप करे कंद कोट तरफ वधण लगो। गुडू बी एस फीडर जा दरिया का गेट बंदर बंद करण सब वकरा घट थियण शुरू थी वया। इंतजामिया चवणा आहे घारे जे पाणीअ मां कंदकोट शहर खे को खतरो न आहे। पाणी जी सतह घटजण शुरू थी वई आहे। घारो ॿधण में कुझु वक़्तु लॻी सघे थो। कराची यूनिवर्सिटी में सिंधी शागिर्दनि ऐं उस्तादनि ते हमले केस में पुलिस सियासी दबाउ जो शिकार। सिंधी शोबे में हमले केस में नामज़द जवाबदारनि जी गिरफ़्तारीअ लाइ पुलिस कख भञी बीणो न कयो। पुलिस गिरफ़्तार कयल 5 जवाबदारनि जो बि रिमांड न वरितो। जवाबदारनि खे जेल कस्टडी कयो वियो। फरियादियुनि जे वकील जो चवणु आहे त केस में 20 जवाबदार नामज़द आहिनि। हिन वक़्त ताईं पुलिस का बि अघु भराई न आहे। कई जांच आफ़ीसर फरियादीअ सां बि राब्ते में न आहे। गिरफ़्तार कयल 7 जवाबदारनि मां ॿिनि खे FIR में नालो शामिल न करण करे आज़ाद कयो वियो आहे। कराची यूनिवर्सिटी सिंधी शोबे में 35 खां वधीक जवाबदारनि हमिलो करे उस्तादनि शागिर्दनि ऐं सिंधी शोबे जे मुलाज़िमनि खे तशदुद करे ज़ख़्मी कयो। सठ इंसानियूं जानियूं गणकाईंदड़ ॿार ऐं जतोई धुरियुनि में खूनी तकरार जे जरगे जी फतवा जारी। ॿिन्ही धुरियुनि ते मजमूई तौर 81,51,16,000 रुपया ॾंड मुक़रर। सरदार अली गौर मर ऐं डॉक्टर इब्राहिम जतोई जी निगरानी में जारी कयल फतवा फी खून जी बहा 25,00,000 रुपया मुक़रर। जतोई बिरादरीअ जे हमले में मारिजी वियल मर बिरादरीअ जे घोट जो हैवज़ो 45,00,000 मुक़रर। जरगे में मरनि जा 33 खून 5 जा ज़ख़्मी जॾहिं त जतोई धुर जा 27 खून 37 ज़ख़्मी साबित थिया। जतोई धुर मथां मजमूई तौर 9,88,16,000 रुपया ॾंड मुक़रर कयो वियो। महर धुर मथां मजमूई तौर 8,83,00,000 रुपया ॾंड मुक़रर कयो वियो। फुर थियल सामान जी वापसी ऐं नुक़सान थियल सामाननि जे काथे बाबति MNA शहरियार महर ऐं अॻूणे MPA मीर आबिद जतोई जी सरबराही में कमेटी क़ाइमु। पीपल्स पार्टी पारां भारत जे आबी दहशतगर्दीअ ख़िलाफ़ मरसूं सिंधु न ॾेसूं जे उनवान हेठि रैलियूं। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुटो ज़रदारीअ जे हिदायत ते सिंध जे ज़िले हेडक्वार्टर समेत मुख़्तलिफ़ शहरनि में रैलियूं कढी वियूं। भारत ऐं मोदीअ जे आबी दहशतगर्दीअ ख़िलाफ़ सख़्तु नारेबाज़ी। कराची हैदराबाद मीरपुर ख़ास चंडोल यार बदीन दादू खेरपुर ऐं ॿियनि शहरनि में रैलियूं। लाड़कानो टंडर मोहम्मद खान जेकाबाद कंदकोट शिकारपुर नौशरो फिरोज मिठी मीरपुर माथेलो में पीपल्स पार्टीअ जूं रैलियूं। उमरकोट नवाबशाह ठट्टो पनो आकल मिठी ऐं ॿियनि शहरनि में बि भारतीय आबी दहशतगर्दीअ ख़िलाफ़ रैलियूं कढियूं वयूं। अॻवाणनि चयो त भारत पाणीअ खे हथियार तौरु इस्तेमालु करे रहियो आहे। मारका हक़ में शिकस्त खां पोइ भारत आबी जंग करणु चाहे थो। खे सिंध तास मुआदे जे मामले ते नाकामी थींदी।

सकरंड ऐं मेहड़ में प्रिया कुमारी उजाला सोलंकीअ जे बाज़ियाबी लाइ एहतजाज। मेहड़ में उजाला परवीन जे वारसनि चयो त 99 ॾींहं गुज़रण बावजूद पुलिस ॿारड़ी बाज़ियाब न कराए सघी आहे। सकरंड में एसयूपी अॻवाननि पारां प्रिया ऐं उजाला जे बाज़ियाबी लाइ एहतजाजी कैंप टे ॾींहं बि जारी। अॻवाननि चयो त जवाबदारनि बासर हुजण सां पुलिस कारवाई नथी करे ॿारड़ियूं बाज़ियाब करायूं वञनि। भान सैदाबाद में कणक ज़खीरो कंदड़नि खिलाफ़ ॿिए ॾींहं बि कार्रवाइयूं। असिस्टेंट कमिश्नर जे अॻवाणी में जोई रोड ते क़ाइम गोदाम ते छापो। कणक जूं 6000 बोरियूं हथ कणक सरकारी गोदाम ते मुंतकिल करण दौरान वापारियुनि ऐं ज़िले इंतिज़ाम जे अमलदारनि विच में चकरियूं।

मीरपुर माथेलो में अफगान जे नेकाली है प्रिया कुमारी जे बाजियाबी लाए जसा बशीर खान कुरेशी ग्रुप पारा रैली अगवाणन चयो त सॼी सिंध अंदर ज़मीन ते धारिया क़ाबिज़ थी रहिया आहिनि सिंधियुनि खे बेघर कयो पियो वञे घोटके में यूनिवर्सिटी क़ाइम कई वञे अफ़गाननि खे नेकाली ॾेई प्रिया कुमारीअ खे बाज़ियाब कराए ॿिया मसइला हल कया वञनि।

कंदाकोट पुलिस करमपुर में अगवा थी वेल बारड़ी जीनत सोलंगी के बाजियाब कराए वरतो। फायरिंग की डेवट में बारड़ी की अगवा में मुलविस धाड़ेल मारजी वयो। बारड़ी जीनत सोलंगी के 16 जून से करमपुर के इलाके में घर अगवा कयो वयो हो। पुलिस जो चवणा है जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से ए सेक्शन थाने के हद गोठ शालू मोड़ वटे कार्रवाई कई वही। पुलिस के ॾिसंदे ही अगवा कारण फायरिंग कई। जवाबी कार्रवाई में एक धाड़ेल पांजन ही साथियों के गोली लगने सबब मारजी वो है। मारजी वेल धाड़ेल की सुणप अब्दुल नबी वलद मोहम्मद हसन सोलंगी तौर थी आए। सिंध के मुख्तलिफ जिलों में अज का किथे हल्की तो किथे तेज बरसात जो इम्कान। मौसमियात खाते मूजिब सिंध के कुछ इलाकन में मिट्टी के तूफान की भी अग कथी कर छी। दादू ए कंबर शहदादकोट जिलों में अज कुछ हंधन से हल्की वसकारे जो इम्कान। मिट्टी जो तूफान भी थी सके तो शिकारपुर कश्मोर सखर शहीद बेनजीराबाद घोटकी नौशरो फिरोज में बरसात जो इम्कान। सामुंडी पट्टी वाले इलाकन में हल्की बरसात थी सके थी। कराची में इंदड़ 3 दिन दौरान मौसम जुड़ाली घिमिल रही।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: It's 5:15 PM.
2: This time check is brought to you by D Skin Beauty Cream. Asli glow har niya josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: क्या आप जोड़ों के दर्द, पट्ठों के खिंचाव, कमर दर्द या सूजन से परेशान हैं?
4: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश, फकीरी एनर्जेसिक क्रीम,
3: कुदरती अज्जा से तैयार करदा।
4: ये मासर क्रीम मुतासरा जगह पर तेजी से जज्ब होकर
3: दर्द और सोजिश से आराम पहुंचाती है।
4: रोजमर्रा के जिस्मानी दर्द,
3: वर्जिश के बाद होने वाली तकलीफ,
4: गर्दन और कंधों के दर्द
3: और पट्ठों की अकड़न के लिए बेहतरीन इंतखाब।
4: सिर्फ मुतासरा जगह पर दिन में 3 से 4 मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
3: उम्रा और हज पर जाने वाले हजरात फकीरी एनल्जेसिक क्रीम को अपने हमरा रखें।
4: फकीरी एनल्जेसिक क्रीम, दर्द, सूजन, वरम फौरी खत्म। आज ही करीबी स्टोर से नाम लेकर तलब करें।

लहर, जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज।
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जुड़ियों छाइयों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जिल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडिएंट लुक, रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं, बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
3: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

अबनाए हुरमस तां अमरीका ऐं ईरान विच में शुरू थियल छेकताण ख़त्म न थी, ॿिन्ही मुल्कनि जो हिक ॿिए ते मुआदे जे भञ करण जो इल्ज़ाम। अमरीका जे ईरान जी फ़ौजी ताक़तुनि ऐं दिफ़ाई निज़ाम ते बमबारी, मेज़ाइल ऐं ड्रोन साइट्स तबाह करण जी बि दावा। ईरान जा बि अमरीका ते जवाबी वार। बहरीन, कुवैत ऐं उर्दन में अमरीकी अॾनि ते मेज़ाइल ऐं ड्रोन हमला कया विया। बहरीन, उर्दन ऐं कुवैत पारां हमलनि जी तस्दीक। मेज़ाइल ऐं ड्रोन फिज़ा में नाकाम बणाइण जी दावा। खिते जे कंहिं बि मुल्क ते हमिलो न आहे कयो न कंदासीं। तहरान जूं दिफ़ाई कारवायूं अमरीकी अॾनि ऐं ठाकनि ख़िलाफ़ हूंदियूं। ईरानी परॾेही तर्जुमान इस्माइल बकाई चयो आहे त खिते जा मुल्क ईरान ख़िलाफ़ पंहिंजी सरज़मीन इस्तेमाल थियण न ॾियनि। पाड़ेसरी ईरान ख़िलाफ़ फ़ौजी जारियत में शामिल थिया त ईरानी फ़ौज जो जाइज़ हदफ़ हूंदा। खिते जी मौजूदा सूरत हाल ते पाकिस्तान पारां गणती ज़ाहिर, धुरियुनि खे सब्र ऐं सहप करण जो मुतालबो। परॾेही तर्जुमान चयो आहे त धुरियूं छिकताण जे ख़ात्मे लाइ फौरी तौर ते क़दम खणनि। इस्लामाबाद जी मफ़ाहमती यादाश्त नामे ते अमल कंदे सफ़ारतकारीअ खे तरजीह ॾियनि। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ॿिनि ॾींहनि जे दौरे ते तुर्किया पहुची वियो। फील्ड मार्शल तुर्किया जे अस्करी क़यादत सां मुलाक़ातूं कंदो। फील्ड मार्शल जो तुर्किया पहुचण ते शानदार आदर भाव कयो वियो। सिक्योरिटी ज़रियनि मूजिबि फील्ड मार्शल तुर्क अस्करी क़यादत सां दिफ़ाई सहकार ते बि ॻाल्हि ॿोल्हि कंदो। बलोचिस्तान में ऑपरेशन शहबान जारी। वधीक 5 ख़ारजी दहशतगर्द मारिजी विया। ऑपरेशन शहबान में जनम भेड़ो थींदड़ दहशतगर्दनि जो मजमूई अंग वधी 76 थी वियो। पाक फ़ौज, एफ़सी, बलोचिस्तान ऐं पुलिस जो गॾियल ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी ज़रियनि मूजिबि ऑपरेशन दौरान ख़ारजियुनि खे हवाई ऐं ज़मीनी कार्रवाइनि ज़रिए निशानो बणायो पियो वञे। 5 जुलाई खां ऑपरेशन शहबान ऐं ॿियनि ऑपरेशन ज़रिए मारिजी वियल दहशतगर्दनि जो अंग वधी 114 थी वियो आहे। वज़ीर आज़म शाहबाज़ शरीफ जी कतरी अमीर शेख तमी बिन हमद अल सानी सां मुलाक़ात। अॻूणे अमीर शेख हमद बिन ख़लीफ़ा अल सानी जे लाॾाणे ते ताज़ियत। मुलाक़ात दौरान अॻूणो वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ, वफ़ाक़ी वज़ीर अता तारड़ ऐं ॿिया बि मौजूदु हुआ। वज़ीर आज़म खिते जी अमुन ऐं तरक़ीअ लाइ मरहूम जी कोशिशनि जी वाखाण कई। वफ़ाक़ी आइनी अदालत इस्लामाबाद जे इलाइक़े पीर सुहावा में मोनाल रेस्टोरेंट खे रहण वारे सुप्रीम कोर्ट जे फ़ैसिले खे कलदम करार ॾेई छॾियो। अदालत CDA ऐं मेट्रोपोलिटन सिटीअ जूं अपीलूं बि मंज़ूरु करे वरितियूं। स्टे आर्डर ख़तमु। अदालत जे ट्रायल कोर्ट्स खे दरख़्वास्तनि ते जल्द फ़ैसिलो करण जी हिदायत। जस्टिस हसन अज़र रिज़वी चयो त सुप्रीम कोर्ट जे फ़ैसिले में घणनि नुक़्तनि खे साम्हूं नाहे रखियो वियो। अदालत केस दाख़िल करण ऐं नज़रसानी ते बि कावड़ कई। असांखे जज़्बाती फ़ैसिलो नाहे करणो।

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ बिंदीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जोशो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: सकरण की हो तो आवाज भी सकरण की है
2: सुनते रहो जी एफ एम 90.8

लहर, जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

अमेरिका जल्द आबराए हुर्मुज़ जो कंट्रोल संभाली तो जै बाद आबराए हुर्मुज़ में गुजरंदड़ जहाजन का मुआवजो वरतो वो। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के मुआदे की भंजकड़ी जो इल्ज़ाम लगाईदे है तो तेहरान से 10 भेरा मुआदो किया है 10 भेरा ही मुआदो टोड़ो है। आबनाए हुर्मुज़ की हिफाजत करण जो अमेरिका मुआवजो वो बूं कौमू अमीर आन केर असा उम्मीद न रखे तो खेस मुफ्त में आबनाए हुर्मुज़ में गुजरण दिनों वो। जंग में ईरान के बर्तनाक शिकस्त ढी पी रही है।

आबनाए हुरमस तां अमरीका ऐं ईरान विच में शुरू थियल छिकताण ख़तम न थी, ॿिन्ही मुल्कनि जो हिक ॿिए ते मुआदे जी भञ करण जो इल्ज़ाम। अमरीका जे ईरान जी फ़ौजी ताक़तुनि ऐं दिफ़ाई निज़ाम ते बम्बारी, मिज़ाइल ऐं ड्रोन साइट्स तबाह करण जी दावा। ईरान जा बि अमरीका ते जवाबी वार। बहरीन, कुवैत ऐं उर्दन में अमरीकी अॾनि ते मिज़ाइल ऐं ड्रोन हमला। बहरीन, उर्दन ऐं कुवैत पारां हमलनि जी तस्दीक़। मिज़ाइल ऐं ड्रोन फिज़ा में नाकाम बणण जी दावा। खिते जे कंहिं बि मुल्क ते हमिलो नाहे कयो, न कंदासीं। तहरान जूं दिफ़ाई कारवायूं अमरीकी अॾनि ऐं थाकनि ख़िलाफ़ हूंदियूं आहिनि। ईरानी परॾेही तर्जुमान इस्माइल बकाई चयो आहे त खिते जा मुल्क ईरान ख़िलाफ़ पंहिंजी सरज़मीन इस्तेमाल थियण न ॾियनि। पाड़ेसरी ईरान ख़िलाफ़ फ़ौजी जारियत में शामिल थिया त ईरानी फ़ौज जो जाइज़ हदफ़ हूंदा। खिते जी मौजूदा सूरतहाल ते पाकिस्तान पारां गणती ज़ाहिर, धुरियुनि खे सब्र ऐं सहप करण जो मुतालबो। परॾेही तर्जुमान चयो आहे त धुरियूं छिकताण जे ख़ात्मे लाइ फौरी तौर ते क़दम खणनि। इस्लामाबाद जे मफ़ाहमती यादाश्त नामे ते अमल कंदे सफ़ारतकारी खे तरजीह ॾिनी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ॿिनि ॾींहनि जे दौरे ते तुर्किया पहुची वियो। फील्ड मार्शल तुर्किया जे अस्करी क़यादत सां मुलाक़ातूं कंदो। फील्ड मार्शल जो तुर्किया पहुचण ते शानदार आदर भाव कयो वियो आहे। सिक्योरिटी ज़रियनि मूजिबि फील्ड मार्शल तुर्क अस्करी क़यादत सां दिफ़ाई सहकार ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदो। बलोचिस्तान में ऑपरेशन शहबान जारी, वधीक 8 ख़ारिजी दहशतगर्द मारिजी विया। ऑपरेशन शहबान में जनम भेड़ो थींदड़ दहशतगर्दनि जो मजमू अंग 79 थी वियो। पाक फ़ौज, एफ़सी बलोचिस्तान ऐं पुलिस जो गॾियल ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी ज़रियनि मूजिबि ऑपरेशन्स दौरान ख़ारिजियुनि खे हवाई ऐं ज़मीनी कार्रवाइनि ज़रिए निशानो बणायो पियो वञे। 5 जुलाई खां ऑपरेशन शहबान ऐं ॿियनि ऑपरेशन्स ज़रिए मारिजी वियल दहशतगर्दनि जो अंग वधी 117 थी वियो आहे। वज़ीर आज़म शाहबाज शरीफ जी कतरी अमीर शेख तमी बिन हमद अल सानी सां मुलाक़ात। अॻूणे अमीर शेख हमद बिन ख़लीफ़ा अल सानी जे लाॾाणे ते ताज़ियत। मुलाक़ात दौरान अॻूणो वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ़, वफ़ाक़ी वज़ीर अताब तारण ऐं ॿिया बि मौजूदु हुआ। वज़ीर आज़म खिते जी अमुन ऐं तरक़ीअ लाइ मरहूम जी कोशिशुनि जी वाखाण कई। वफ़ाक़ी आइनी अदालत इस्लामाबाद जे इलाइक़े पीर सुहावा में मोनाल रेस्टोरेंट किराइण वारे सुप्रीम कोर्ट जे फ़ैसिले खे कलदम करार ॾेई छॾियो। अदालत CDA ऐं मेट्रोपोलिटन सिटीअ जूं अपीलूं बि मंज़ूरु करे वरितियूं। स्टे आर्डर ख़तमु। अदालत जे ट्रायल कोर्ट्स खे दरख़्वास्तनि ते जल्द फ़ैसिलो करण जी हिदायत। जस्टिस हसन अज़र रिज़वी चयो त सुप्रीम कोर्ट जे फ़ैसिले में घणनि नुक़्तनि खे साम्हूं नाहे रखियो वियो। अदालत केस दाख़िल करण ऐं नज़रसानी ते बि कावड़ कई। असांखे जज़्बाती फ़ैसिलो नाहे करणो। वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह जी सदारत हेठि वलीका इस्पताल में रिपोर्ट थींदड़ HIV केसिस बाबति इजलास। CC जी मातहत वलीका इस्पताल में HIV केसिस बाबति ब्रीफिंग ॾिनी वई। इजलास खे ॿुधायो वियो त वलीका इस्पताल में 78 ॿारनि में HIV जी तस्दीक थी चुकी आहे। जांच खां पोइ कोताही कंदड़नि केतिरनि ई ऑफिसरनि ख़िलाफ़ कार्रवायूं शुरू कयूं वियूं आहिनि। वॾे वज़ीर पारां वलीका इस्पताल में HIV केसिस ते 0 tolerance पॉलिसी जो ऐलान। वॾे वज़ीर चयो त सिहत जी सहूलियतुनि जी फरहमी में कंहिं बि क़िस्म जी कोताही बर्दाश्त न कई वेंदी। लाॻापियल ज़िमेवार ऑफिसरनि ख़िलाफ़ कार्रवाई मेरिट जी बुनियाद ते जल्द मुकमल कई वञे।

एमके मगवान ए फाकी वजीर मुस्तफा कमाल जा पार्टी सरबराह डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ते इल्ज़ाम। मुस्तफा कमाल चयो तो वसीम अख्तर जे गवर्नर सिंध तौर मुकररी के खालिद मकबूल सिद्दीकी रोकरायो हो। फैसलो कयो आहे त मुल्क जी मौजूदा हुकूमती मॉडल के तब्दील करे अख्तियार ए वसीला शहरन जे दर ते पहुंचाया वेंदा। मीरपुर खास में पुलिस के कूड़े मुकाबले में मारल डॉक्टर शाहनवाज कुंभर कत्ल केस की बुधनी। सिंध हाई कोर्ट जवाबदार केस खत्म करने वाली दरख्वास्त रद्द कर छी। अदालत फैसले में चयो है एफ आई ए के अड़न केसन में नई एफ आई आर दाखिल करण जो अख्तियार ना है। कानूनी गलती से जवाबदार के फायदो न तो दे सकजे। अदालत रुगो जांच मुंतकिल करण की हिदायत कई हुई। नई एफ आई आर दाखिल करण जो को हुक्म न दिनो हो। एफ आई ए के कस्टोडियल टॉर्चर एंड डेथ एक्ट तहत नई एफ आई आर दाखिल करण जो अख्तियार हासिल ना है। एफ आई ए वर्ग केस जो चालान पिण अदालत में जमा थी चुको। मामलो कानूनी तरीकेकार की गलती है जैसे दुरुस्त कर सकजे तो। जांच कंदड़ इदारे की कानूनी तशरी में गलती की बुनियाद से जवाबदार के फायदो न तो दे सकजे। एफ आई ए की दाखिल कल केस के पुलिस केस तौर तस्वर किया वे।

0: का भतीजा है डॉक्टर आकाश, उसकी 28 साल उम्र है, ऑन ड्यूटी डॉक्टर है जना हॉस्पिटल में। बैंक अलाबीप में जैसे गाड़ी से उतरा है तो उसको तो डाकुओं ने उसको गोलियां मारी है, उसी टाइम वो इंतकाल कर गए। ये इतना जुल्म, नाइंसाफी, ये मैं पुरजोश अपील करूंगा, खासतौर पे आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर को, ये जो है ना इतनी नाजायजी और ये इतने डॉक्टर, नौजवान डॉक्टर मारे जाएंगे तो ये कैसे चलेगा। खास करके आईजी सिंध को, जब तक ये कातिल नहीं पकड़े जाएंगे और हमें इंसाफ तक नहीं मिलेगा तब तक हम एहतजाजन हम रोड ब्लॉक करेंगे, हम बाड़ी रख के हम एहतजाजन पूरी मार्केट ही बंद करेंगे।
1: कराची के पोश इलाके क्लिफ्टन में बैंक में पैसा कढ़ाए निकरंदड़ रोड़ी वासी डॉक्टर बैंक बाहरा ही कतल। हथियारबंदन बैंक में पैसा कढ़ाए निकरंदड़ डॉक्टर आकाश का बैंक बाहरा ही फुरलुट कई मजामत करने फौरन डॉक्टर आकाश के गोली हणी कतल कर छो। 25 लख रुपया फुरे फरार। मकतूर डॉक्टर के वारसन जो 3 तलवार से लाश रखी धरणो हणन जो चिताव। जवाबदार के गिरफ्तार करण जो मुतालबो। फुर मजामत डॉक्टर के कतल जो आईजी सिंध में नोटिस वरतो, रिपोर्ट तलब।

सिंध के मुख्तलिफ शहरों में लेडी हेल्थ वर्कर्स के PPHI में जिम करने खिलाफ एहतजाज। हैदराबाद, टंडोलियार, उमरकोट, जैकबाबाद ए बेन शहरों में लेडी हेल्थ वर्कर्स पारा एहतजाज किया वो। लेडी हेल्थ वर्कर्स तो PPHI में जिम करने वो फैसलो कबूल ना है। लेडी हेल्थ वर्कर्स के सर्विस स्ट्रक्चर दिनों वे सिंध के मुख्तलिफ शहरों में पानी चोरी ए खोट खिलाफ आबादगारन जा मुजाहरा। मीरपुर खास में नारा कैनाल के आबादगारन जो पानी खोट खिलाफ एहतजाज। रोहड़ी भरसा काजीवाज के आबादगारन आपाशी अमले ते पानी विक्रो करने जो इल्जाम लगायो। संगरार, फकीराबाद जे गोठ गुलाम गोठ ए बेन पुछड़ी के आबादगारन एहतजाज किया। तलार में भी आबादगारन पारा एहतजाजी मुजाहरो करे नारेबाजी की वही।

सिंध यूनिवर्सिटी की शागिर्दयाणी नायल अरिंद केस में जवाबदार की सजा खिलाफ अपील मंजूर। अदालत पारा जवाबदार अनीस कासकेली के आजाद करने जो हुक्म। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस उमर सियाल जस्टिस मोहम्मद अब्दुल रहमान 26 सुफन से बदल फैसलो जारी कर फैसले में चाहिए है नायल अरिंद जो तस्वीरू आम करण जो को सबूत ना मिलो दबाव जो भी साबित ना शागिर्दयाणी नायल अरिंद जो सिंध यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में फाहो लगल लाश मिलो हो। मिठी में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में मेरिट की लताड़ खिलाफ सिंधी शागिर्द तहरीक जो एहतजाज कारकुनन बिलावल पार्क का कश्मीर चौक ते एहतजाजी रैली कड़ी धरणो हो अगवान सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में शागिर्दन की ख्वाबन की सौदेबाजी कई पी वे नौकरियों विक्रो कई वन थी मेरिट की लताड़ बंद कई वे। पनवाकिल में कणक जखीरों कदड़न खिलाफ कार्रवाई 6 गोदाम सील 22,000 बोरियों हथ खुराकात से हसास इदारे ए पुलिस से गड कार्रवाई क्यों छापन दौरान कणक जो 22,000 बोरियों हथ कर 6 गोदाम सील किया व्या इंतजामिया जो चवण है तो कणक जखीरों कदड़ व्यापार खिलाफ कार्रवाई कई वही है। बंग्लादेश में बसकारन तबाही मचाए छी 51 जणन के फौत थे तस्दीक लखें मानू बेघर हजारें घर बुड़ी वया बेआफ बंगाल वाले इलाके में बरसातों सबब तबाही थी पानी घर में दाखिल थी वयो केतरा ही घर मुकम्मल तौर से बुड़ी वया चीन में भी बरसातों बाद आयल बोड गार्डन के लोड़े छोड़

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: क्या आप जोड़ों के दर्द, पट्ठों के खिंचाव, कमर दर्द या सूजन से परेशान हैं?
2: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश, फकीरी एनल्जेसिक क्रीम,
1: कुदरती अज्जा से तैयार करदा।
2: ये मासर क्रीम मुतासरा जगह पर तेजी से जज्ब होकर
1: दर्द और सोजिश से आराम पहुंचाती है।
2: रोजमर्रा के जिस्मानी दर्द,
1: वर्जिश के बाद होने वाली तकलीफ,
2: गर्दन और कंधों के दर्द
1: और पट्ठों की अकड़न के लिए बेहतरीन इंतखाब।
2: सिर्फ मुतासरा जगह पर दिन में 3 से 4 मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
1: उम्रा और हज पर जाने वाले हजरात फकीरी एनल्जेसिक क्रीम को अपने हमरा रखें।
2: फकीरी एनल्जेसिक क्रीम, दर्द, सूजन, वरम फौरी खत्म। आज ही करीबी स्टोर से नाम लेकर तलब करें।
3: अजरक के रंगों से रंगी,
4: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
3: सिंध के दिल से निकली आवाज, आवाज
4: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: हर चप्पा हर गोशा।
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

अच्छी हो तो आवाज भी सिंह की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंह की आवाज।

0: It's 8 p.m. This time check is brought to you by
1: फकीरी एनल्जेसिक क्रीम, दर्द, सोजन, वरम फौरी खत्म। आज ही करीबी स्टोर से नाम लेकर तलब करें।
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: हुरमुस जी निगरानी जो मुआवज़ो घुरी वरतो। डोनल्ड ट्रंप चयो आहे त अमेरिका अपनाए हुरमुस जो कंट्रोल संभालींदो। हिन अहम सामुंडी लंघ जी निगरानी एवज़ अमेरिका खे मुआवज़ो बि मिलणु घुरिजे। अमेरिकी मीडिया सां ॻाल्हि ॿोल में ट्रंप चयो त ईरान खे शदीद हमलनि जो निशानो बणायो। एंटी एयरक्राफ्ट गन सूतो संदन अक्सर सामान तबाह करे छॾियो। ईरान जॾहिं बि ड्रोन हमला कंदो असांखे बदतरीन नमूने सां निशानो बणाईंदासीं। हू सदाई मुआवज़ो टोड़ींदा आहिनि, उन करे हाणे खेनि शदीद निशानो बणायो वेंदो। असां अबनाए हुरमुस खे पाण वटि रखंदासीं ऐं शायदि उनखे असां ई हलायूं। अबनाए हुरमुस जा मुहाफ़िज़ बणिजी वेंदासीं, पर उन लाइ असांखे मुआवज़ो मिलणु घुरिजे।

अमेरिका मुफ़ाहमती याददाश्त जी पासदारी नथो करे त ईरान बि उन ते अमल न कंदो। ईरान अमरीकी अॾनि ते कार्रवाई खे दफ़ाई हक़ करार ॾेई छॾियो। अमेरिका ते मुफ़ाहमती याददाश्त जी भञकड़ी में अगबराई जो ऐलान इल्ज़ाम ईरानी परॾेही तर्जुमान इस्माइल बकई चयो आहे त मुफ़ाहमती याददाश्त बोहरान मां गुज़री रहियो आहे। ईरान खे पंहिंजे दिफ़ा ते इल्ज़ाम लॻाइणु ग़ैर ज़िमेवारो अमल आहे। अमरीका मुफ़ाहमती याददाश्त जो लाॻीतो भञकड़ी करे रहियो आहे। अमरीका मुआदे में आबनाए हुर्मुस बाबति हिकु महीने जी मोहलत बि पूरी थियणु न ॾिनी। ईरान आबनाए हुर्मुस में समूरा घुर्बल क़दम खणण जो हक़ रखे थो। इस्माइल बकाई पारां अमरीका ते हुर्मुस मामले ते ओमान मथां दॿाउ विझण जो इल्ज़ाम। इलाइक़ी मुल्कनि खां ईरान ख़िलाफ़ु हमलनि लाइ पंहिंजी सरज़मीन जो इस्तेमालु रोकण जो मुतालबो। ईरानी परॾेही तर्जुमान चयो त 63 मुल्कनि पारां शिकताण घटाइण जूं कोशिशूं अञा बि जारी आहिनि।

फील्ड मार्शल सद आसम ॿिनि जे सरकारी दौरे ते तुर्किया पहुची वियो। सिक्योरिटी ज़रियनि मूजिबि तुर्किया पहुचण ते फील्ड मार्शल सद आसम जो गर्मजोशी सां इस्तक़बाल कयो वियो। फील्ड मार्शल सद आसम तुर्किया जे सियासी ऐं अक्सरी क़यादत सां मुलाक़ातूं कंदो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ ऐं अॻूणे वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ़ जी दोहा में क़तर जे अमीर शेख तमीम सां मुलाक़ात। शेख हमद जे लाॾाणे ते ताज़ियत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ऐं अता तर बि मुलाक़ात में मौजूदु हुआ।

0: टे ॼणा हिते जेका दिलि पसंदि जे बराबरि में बैंक आहे हबीब बैंक उतां पैसा विड्रॉ कराए तक़रीबन 5 मिलियन उहे हिते डिपॉज़िट करणु आया पिए त रस्ते में हुननि खे कीअं फॉलो कयो जीअं हू गाॾी हिते लॻी ऐं हुन खां पोइ लहणु लॻा त पोयां खां उहे 4 जवाबदार जेके आहिनि उहे मथे मौक़े ते पुॼी विया। हिकिड़ो जेको आहे हुन मां लही करे सिक्योरिटी गार्ड वारे पासे भाॻो त सिक्योरिटी गार्ड सम त शायदि ई बैंक ई अंदरि था अचनि त उन्हनि जेको आहे सिक्योरिटी गार्ड हुन ते फायरिंग करे ॾिनी। ॿाहिरि जेको आहे उहो छा सिक्योरिटी गार्ड जो लॻो आहे या जेको आहे हुनजो लॻो आहे, पर लाइकली पॉसिबिलिटी वधीक आहे त जो जंहिं पासे खां फायर लॻो आहे छोकिरे खे सिक्योरिटी गार्ड जी फायरिंग उन पासे खां आहे त पॉसिबिलिटी आहे लाइकली सिक्योरिटी गार्ड जो फायर लॻो।
1: कराची जे इलाइक़े क्लिफ्टन में फुर दौरान बैंक जे गार्ड ऐं फोरन विच में फायरिंग जी ॾे वठि दौरान गोलियूं लॻण सां रोहिड़ी वासी डॉक्टर आकाश कुमार क़तल। SSP ॾखण महरोज़ अली चयो आहे त डॉक्टर आकाश वालिद ऐं कज़न सां गॾु हिकु बैंक मां पैसा कढाए ॿी बैंक वञी रहियो त फोरू पहुची विया। कार में सवार डॉक्टर ऐं ॿियनि मां हिकु ॼणो सिक्योरिटी गार्ड वारे पासे वियो त गार्ड सम्झो त हीउ बि फोरू आहिनि। गार्ड फायरिंग कई ऐं जवाबदार बि फायरिंग कई। इम्कान आहिनि त आकाश खे गार्ड जूं गोलियूं लॻियूं। फुर जे वाक़े दौरान फायरिंग में डॉक्टर आकाश कुमार जे क़तल वारे वाक़े जा CCTV फुटेजिस बि साम्हूं अची विया। फुटेजिस में ॾिसी सघिजे थो त हिकु जवाबदार भॼंदो ई अचे थो ऐं पहिरियां गार्ड ते फायरिंग करे थो। जवाबदार खे कार जो दरवाज़ो खोले पैसनि जी बैग खणी भॼंदे ॾिसी सघिजे थो।

गडा में वापारी धर्मदास कल्पराणी के घर में करोड़े रुपये की माली चुधाड़ो अठ का वधीक हथियारबंदन घर अंदर घिड़ी गर्भातिन के टन कलाकन ताई यर कमाल बनायो जाबदार 150 तोला सोन चांदी ए 20 लख रुपया रोक रकम फुरकण बाद फरार थी व्या। पीपल्स पार्टी मिनार्टी विंग्स के नायब सदर मुखी ओधामल चाहे तो मुझे भेणी वे वापारी धर्मदास के घर में धाड़ो लगो है पुलिस तमाशा ही बनल है जाबदार के गिरफ्तार करने का मुतालबो। बलूचिस्तान में ऑपरेशन शोहबान जारी वधिक 5 खवारची मारची व्या। सिक्योरिटी सर्वेन्स जो चवण है तो पाक फौज एफसी ए पुलिस जो गडियल ऑपरेशन शोहबान जारी है खारजिन के हवाई ए जमीनी कार्रवाई करे निशानो बनाए पे वे ऑपरेशन शोहबान में मारची वाल खारजिन जो अंग 76 थी वो 5 जुलाई का 114 खारजी मारची व्या। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तीन बलूचिस्तान में ऑपरेशन शोहबान जारी रह। वफाकी आइनी अदालत नई गाज डैम की अदावत मुकमल थे तई कें अदालत के मुदाखलत का रोके छो। हाईकोर्ट जहाँ फैसला ए हुकुम कालतम करार वफाकी आइनी अदालत फैसले में चो है तो डैम की अदावत के मुआदे में तय थियल तरीक़ेकार तहत तकरारन जो हल थी हिदायत जो मकसद वधिक कानूनी कार्रवाई जो एक आम अवामी बुनियादी ढांचे के मनसूबे के मुकमल करण में रुकावट वजन का रोकण है। 17 सिफन से बुधायल फैसलो चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान लिखो। वफाकी आइनी अदालत चो है तो हाईकोर्ट कानून के नजर में रखने का सवाय गलत हिदायतों जारी क्यों हाईकोर्ट हुकुमन में तकरारन जो हल वापडा ए नैब कानून के नजर में रखंदे न रखो। आइनी हदू ओरांगण के नतीजे में इंसाफ की फरहमी खराब थी है उम्मीद है तो दूरी असल मायदे मूजिब अगत कॉन्ट्रैक्टर की शिकायत मिलने बाद 15 दिन में वापडा फैसलो करे कॉन्ट्रैक्टर के मुआदे की भंजकारी करण से वापडा कानून मूजिब कमन के बीहर टेंडर करण की आज़ादी होंगी। वफाकी आइनी अदालत सुप्रीम कोर्ट जो एक बो फैसलो कालादम करार दी छो। वफाकी आइनी अदालत मुनाल रेस्टोरेंट ड्राहणवारो सुप्रीम कोर्ट फैसलो कालादम करार दींदे सीडीए ए मेट्रोपोलिटन सिटी जो अपीलू मंजूर कर वरतूँ स्टे ऑर्डर खत्म ट्रायल कोर्ट्स के जल्द केसिस से फैसला बुधाने की हिदायत। वफाकी आइनी अदालत चो है तो इंतजामी मामलों का फैसला रेगुलेटरी बॉडीज कर दियो। जस्टिस हसन रजवी चो है तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले में घणन नुकतन के नजर में न रखे वो केस दाखिल या नजरसानी करण ते भी सुप्रीम कोर्ट कावड़ कई फैसले में उवो कुछ लिखो वो जैमें अफसाने में जिक्र न हो असा के जज्बाती फैसला नाहन कहना अलफ लैला की कहानी फैसले में न लिखासी फैसलो पढ़ो तो अंदाजो थी वो कुछ घड़ो कुछ अदालती कार्रवाई का बाहर लिखल है। सुप्रीम कोर्ट के अगूणे चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा 21 अगस्त 2024 मोनाल रेस्टोरेंट के ड्राइण जो हुक्म दिनों हो।

0: सिंध हाईकोर्ट FIA पारां शाहनवाज कुंभर जूं दाखिल कयल कतल केस खारिज करण वारियूं दरख़्वास्त रद्द करे छॾी। अदालत रिमार्क्स ॾींदे चयो त FIA खे नई FIR करण जो अख़्तियार न आहे, पर कानूनी ग़लती जो जवाबदारनि खे फ़ाइदो ॾेई नथो सघिजे। केस जी कार्रवाई कानून मूजिबि जारी रहंदी। हाईकोर्ट रुॻो जांच मुंतक़िल करण जी हिदायत कई हुई। अदालत नए FIR दर्ज करण जो हुकुम न ॾिनो हो। हाणोकि केस में पुलिस जी पहिरीं FIR रद्द थी चुकी आहे। FIA केस जो चालान बि जमो न थी चुको। रुॻो क़ानूनी तरीक़ेकार जी ग़लती आहे जेका दुरुस्त करे सघिजे थी। FIA जे केस खे पुलिस केस तौरु तस्वर कयो वञे। सिंध हाईकोर्ट जवाबदारनि जी दरख़्वास्त ख़ारिज करे छॾी। कराची मां मंशिया जे केस में गिरफ़्तार अनमोल उर्फ़ पिनकी जे साथियुनि खे अदालत में पेश न करण ते जेल सुप्रिंटेंडेंट खे नोटिस जारी। जुडिशियल मजिस्ट्रेट ॾखण जी अदालत में अनमोल उर्फ़ पिनकी ख़िलाफ़ गार्डन थाणे ते दाख़िल ॿिनि केसिस जी ॿुधणी थी। अदालत पिनकी जे साथियुनि सोहेल ऐं ज़ीशान खे पेश न करण ते कावड़ जो इज़हार कयो। अदालत चयो त जेल सुप्रिंटेंडेंट वज़ाहत पेश करे त छो जवाबदारनि खे पेश न कयो वञे। जवाबदारनि खे अदालत में पेश न करणु क़ानून जी भञकड़ी आहे। MQM अंदरि इख़्तिलाफ़ मुस्तफ़ा कमाल जी ख़ालिद मक़बूल सिद्दीक़ी ते शिती तनक़ीद। बहादुराबाद में वर्कर्स कन्वेंशन खे ख़िताबु कंदे मुस्तफ़ा कमाल चयो त ख़ालिद मक़बूल चेयरमैन जी इलेक्शन कराइण बदिरां चार भेरा एक्सटेंशन वठी वेठल आहे। ख़ालिद मक़बूल इलेक्शन कमीशन आॾो मौक़िफ़ अख़्तियार कयो त भारत सां जंग सबबि पार्टी इलेक्शन न कराए सघियासीं। इलेक्शन कमीशनर खेसि शरणापति ने चयो त तूं कोर कमांडर आहीं या भारत ख़िलाफ़ जंग पियो विढ़ी। मुस्तफ़ा कमाल चयो त चेयरमैन जी चूंड कराइण ताईं MQM में धड़ाबंदी ख़तमु न थींदी। ख़ालिद मक़बूल गवर्नर सिंध लाइ वसीम अख़्तर जो नालो ॾियण बाद वज़ीर आज़म खे रोके छॾियो। हीउ कहिड़े क़िस्म जा माण्हू आहिनि? मुस्तफ़ा कमाल चयो त 1.5 साल खां ख़ालिद मक़बूल असांखे मुलाक़ात लाइ टाइम न पियो ॾिए। गिलगित बल्तिस्तान जी चूंडुनि में एतमाद में वठण खां सवाइ ॿिनि माण्हुनि खे टिकेट ॾिनी वई। जिन माण्हुनि खे टिकेट ॾिनी वई उहे पीपल्स पार्टी में शामिलु थी विया। ऐं आरओ प्लांट्स जे ऑपरेटर्स जो पको न करणु ऐं पघारूं न मिलण ख़िलाफ़ु कराची प्रेस क्लब आॾो एहतजाज। आरओ प्लांट्स जे ऑपरेटर्स जो चवणो हो त केतिरनि ई महीननि खां पघारूं न मिलियूं आहिनि। सालनि खां ड्यूटी करे रहिया आहियूं पर पको नाहे कयो वियो। सरकार पारां मज़दूर जी मुक़ररु कयल 73,000 रुपया उजरत ते अमलदार अमद न कयो पियो वञे। पघारूं जारी करे पको कयो वञे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
2: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
2: झुर्रियों छाइयों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
3: जल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ फराम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
2: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए। सुनिए

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: तू ना मेरा हीटर, तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा, विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा चेहरा। वाइट एच ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एच ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अजरक के रंगों से रंगी,
3: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज
3: GFM 88 नेटवर्क सिंध।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

की हो तो आवाज भी सिंह की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंह की आवाज।

अब नाए हुरमज में गुजरंदड़ बहरी जहाजन का ईरान के टोल से एतराज कंदड़ अमरीका जो अब नाए हुरमज में गुजरंदड़ जहाजन का 20% फीस वठण जो ऐलान। सदर डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी फौज के बीहर ईरान के बहरी नाकाबंदी करण जो हुक्म दई छो। सदर डोनाल्ड ट्रंप है आबनाए हुरमज जो कंट्रोल जल्द अमरीका संभाल जै बाद आबनाए हुरमज में गुजरंदड़ जहाजन के 20% फीस डेणी पवी कें ला भी आबनाए हुरमज मुफ्त में न हों। तहरान से 10 भेरा मुआदो किया 10 ही भेरा मुआदो तोड़ो है। अमरीका के आबनाए हुरमज जो कंट्रोल संभाल न डींदी ईरानी फौज जो सदर ट्रंप के जवाब। पासदारान इनकलाब है आबनाए हुरमज में मदाखलत खिते की सलामती के खतरे में विझी छो है। अमरीका के आबनाए हुरमज जो कंट्रोल संभाल की इजाजत न डनी है न डींदी तकरार वो तो जंग के शोला बन मुल्क तक पखड़ी सकन था।

आबनाए हुरमत सां अमरीका ऐं ईरान विच में शुरू थियल छिकताण ख़तम न थी, ॿिन्ही मुल्कनि जो हिक ॿिए ते मुआदे जी भञ करण जो इल्ज़ाम। अमरीका जी ईरान जी फ़ौजी थाकनि ऐं दिफ़ा वारे निज़ाम ते बमबारी, मिज़ाइल ऐं ड्रोन साइट्स तबाह करण जी दावा। ईरान जा पिया अमरीका ते जवाबी वार, बहरीन, कुवैत ऐं उर्दन में अमरीकी अॾनि ते मिज़ाइल ऐं ड्रोन हमला कया विया। बहरीन, उर्दन ऐं कुवैत पारां अमलनि जी तस्दीक, मिज़ाइल ऐं ड्रोन फिज़ा में नाकाम बणण जी दावा। हिते जे कंहिं बि मुल्क ते हमिलो नाहे कयो ऐं न ई कंदासीं। तहरान जूं दिफ़ाई कारवायूं अमरीकी अॾनि ऐं थाकनि ख़िलाफ़ हूंदियूं आहिनि। ईरानी परॾेही तर्जुमान इस्माइल बकाई चयो आहे त खिते जा मुल्क ईरान ख़िलाफ़ पंहिंजी सरज़मीन इस्तेमाल थियण न ॾियनि। पाड़ेसरी ईरान ख़िलाफ़ फ़ौजी जारियत में शामिल थिया त ईरानी फ़ौज जो जाइज़ हदफ़ हूंदा। खिते जी मौजूदा सूरतहाल ते पाकिस्तान पारां गणती ज़ाहिर, धुरियुनि खे सब्र ऐं सहप करण जो मुतालबो। परॾेही तर्जुमान चयो आहे त धुरियूं छिकताण जी ख़ात्मे लाइ फौरी तौर ते क़दम खणनि। इस्लामाबाद जी मफ़ाहमती याददाश्त नामे ते अमल कंदे सफ़ारतकारीअ खे तरजीह ॾियनि। برطانیہ جو ایران کے پاسداران انقلاب تے پابندی لگانے جو فیصلو برطانیہ کے گھرو وزارت پارا تصدیق۔ اسلامک موومنٹ آف کمپنیز آف دا رائٹ روس کے جے آر یو والنٹیئر کور پابندی مڈل تنظیمن کے فہرست میں شامل۔ حتمی منظوری لائے بل برطانوی پارلیامنٹ ڈاں موکلو ویو ہے۔

0: सिंध के मुख्तलिफ शहरनि में लेडी हेल्थ वर्कर्स के PPHI में ज़िम करण खिलाफ़ एहतजाज। हैदराबाद, चंडोलियार, उमरकोट, जकबाबाद ए बेयनि शहरनि में लेडी हेल्थ वर्कर्स पारां एहतजाज कयो वियो। लेडी हेल्थ वर्कर्स जो चवण हो त PPHI में ज़िम करण वारो फ़ैसिलो क़बूल न आहे। लेडी हेल्थ वर्कर्स खे सर्विस स्ट्रक्चर ॾिनो वञे। सिंध के मुख्तलिफ़ शहरों में पानी की चोरी ए खोट खिलाफ़ आबादगार मुजाहरा। मीरपुर खास में नारा कैनाल के आबादगार पानी खोट खिलाफ़ एहतजाज। रोहड़ी भरसा काजी वाह के आबादगार अपाशी अमले से पानी विक्रो करण जो इल्ज़ाम लगाया। संगरार, फकीराबाद, गुलाम गोठ ए बेन पुछड़ी के आबादगार भी एहतजाज किया। तलाल में भी आबादगार पानी खोट खिलाफ़ एहतजाज ए धरणो। मुजाहरीन मूजिब पुछड़ ताई पानी न पहुंचण सबब पोखियल फसल सड़ी रहा है, पानी फराहम किया वे। सिंध यूनिवर्सिटी की शागिर्दियाणी नायला रिंद केस में जवाबदार की सजा खिलाफ अपील मंजूर। अदालत पारा जवाबदार अनीस खासकेली के आजाद करण जो हुकुम। सिंध हाईकोर्ट के जस्टिस उमर सियाल ए जस्टिस मोहम्मद अब्दुल रहमान 26 सुफन से बदल फैसलो जारी कर छो। फैसले में चयो वियो आहे त नायला रिंद जो तस्वीरों आम करण जो को सबूत ना मिलो, दबाव जो भी साबितियों ना। शागिर्दियाणी नायला रिंद जो सिंध यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में फाहो लगल लाश मिलो हो। मिठी में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में मेरिट की लताड़ खिलाफ सिंधी शागिर्द तहरीक जो एहतजाज। कारकुनन बिलावल पार का कश्मीर चौक ते एहतजाजी रैली कढ़ी धरणो हो। अगवान जो चवण हो तो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में शागिर्दन की ख्वाबन की सौदेबाजी कई पी वे, नौकरियों विक्रो क्यों वन थी, मेरिट की लताड़ बंद कई वे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: It's 9:15 PM. This time check is brought to you by
3: White Ish Beauty Cream, glowing skin jo raaz, a product by Biocon International Pakistan.
4: क्या आप आसाबी दर्द, जोड़ों की तकलीफ,
5: कमर दर्द या पट्ठों की सूजन से परेशान हैं?
4: अब दर्द को कहें अलविदा
5: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट के साथ।
4: जी हाँ,
5: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश
4: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
5: ये ऑइंटमेंट
4: मुतासरा जगह पर आसानी से जज्ब होकर
5: दर्द, सोजिश
4: और अकड़न से आराम पहुँचाने में मदद देता है।
5: आसाबी दर्द, जोड़ों का दर्द,
4: गर्दन और कमर की तकलीफ,
5: पट्ठों के खिंचाव,
4: चोट, पुराने जख्मों के दर्द
5: और जल्दी जलन में मुफीद।
4: मुतासरा जगह पर दिन में 2 से 3 मरतबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
5: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट,
4: तेज आराम, मुआसर हिफाजत और काबिले एतमाद मयार।
5: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
6: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

पहर जिंदगी की लहर जी एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: मेरा भतीजा है डॉक्टर आकाश, उसकी 28 साल उम्र है, ऑन ड्यूटी डॉक्टर है जना हॉस्पिटल में। बैंक अलाबीब में जैसे गाड़ी से उतरा है तो उसको तो डाकुओं ने उसको गोलियां मारी है, उसी टाइम वो इंतकाल कर गए। ये इतना जुल्म नाइंसाफी, ये मैं पुरजोश अपील करूंगा खासतौर पे आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर को, ये जो है ना इतनी नाजायजी और ये इतने डॉक्टर, नौजवान डॉक्टर मारे जाएंगे तो ये कैसे चलेगा। खास करके आईजी सिंध को, जब तक ये कातिल नहीं पकड़े जाएंगे और हमें इंसाफ तक नहीं मिलेगा तब तक हम एहतजाजन हम रोड ब्लॉक करेंगे, हम बाड़ी रख के हम एहतजाजन पूरी मार्केट ही बंद करेंगे।
1: कराची के पोश इलाके क्लिफ्टन में कत्ल कल डॉक्टर आकाश के वारसन जो तीन तलवार से लाश रखी धरणो, कत्ल में मुलविस जवाबदारन के गिरफ्तार करने जो मुतालबो। मकतूल डॉक्टर के वारसन मूजिब आकाश के डीह डिठे बैंक सामू सरियाम कत्ल किया वो, डोहारन के पुलिस जो खौफ भी ना रो, डॉक्टर आकाश जहा कतल गिरफ्तार किया वन।

आबनाए हुर्मुज़ मां गुज़रंदड़ बहरी जहाज़नि खां ईरान जे टोल ते एतिराज़ कंदड़ अमरीका जो आबनाए हुर्मुज़ मां गुज़रंदड़ जहाज़नि खां 20% फीस वठण जो ऐलान। सदर डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी फ़ौज खे ॿीहर ईरान जे बहरी नाकाबंदी करण जो बि हुकुम ॾेई छॾियो। सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो त आबनाए हुर्मुज़ जो कंट्रोल जल्द अमरीका संभालींदो, जंहिं बाद आबनाए हुर्मुज़ मां गुज़रंदड़ जहाज़नि खे 20% फीस ॾियणी पवंदी। कंहिं लाइ बि आबनाए हुर्मुज़ मुफ़्त में न हूंदो। तहरान सां 10 भेरा मुआदो कयो आहे ऐं हुननि 10 भेरा मुआदो टोड़ियो आहे। अमरीका खे आबनाए हुर्मुज़ जो कंट्रोल संभालण न ॾींदासीं, ईरानी फ़ौज जो सदर ट्रंप खे जवाब। पासदारान इनकलाब चयो आहे त आबनाए हुर्मुज़ में मदाख़लत खे तेज़ी सलामतीअ खे खतरे में विझी छॾियो आहे। अमरीका खे आबनाए हुर्मुज़ जो कंट्रोल संभालण जी इजाज़त न ॾिनी आहे ऐं न ई ॾींदासीं। तकरार वधियो त जंग जी शोला ॿियनि मुल्कनि ते पकड़िजी सघनि था।